सुपर बात 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रहे हैं। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून साल 2026।

इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्रों से। कृपया रेलवे की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा

की दो सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम हिमांजलि में आज बस इतना ही। FM शिमला पर आइए अब सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। FM शिमला पर आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस। नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर कल कांगड़ा जिला के पठियान में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने साहस, स्वाभिमान व राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित 2 मंजिला ई बस चार्जिंग डिपो व अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपए से पुनर्विकसित फवारा चौक का उद्घाटन भी किया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां न मिलने को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन के सह कोषाध्यक्ष लेजराम ने कहा कि उनका आंदोलन 24 जून तक जारी रहेगा और मांगे पूरी न होने पर 25 जून से अनिश्चितकालीन

0: हड़ताल की जाएगी। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से। कृपया रेल की प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
3: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर

0: का मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ, और एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं चिंतन।

रामतारण चक्रवर्ती नाम के एक सज्जन कलकत्ते में किसी व्यापारी फर्म में कार्य करते थे। घर में स्त्री और 10-12 वर्ष की एक लड़की थी। एक दिन घर लौटने पर उन्होंने देखा कि पत्नी और बेटी एक पत्र पढ़ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के छोटे भाई का विवाह निश्चित हुआ है और उन्हें सादर आमंत्रित किया गया है। विवाह से एक सप्ताह पूर्व रामतारण बाबू विवाह में जाने की तैयारी में जुट गए और निश्चित समय पर चल दिए। जहां उन्हें जाना था उस स्टेशन पर गाड़ी दोपहर बाद ही पहुंचती थी। वहां से ससुराल अभी 11 मील दूर थी और जाने का माध्यम केवल बैलगाड़ी ही थी। रामतारण बाबू एक बैलगाड़ी भाड़ा करके भगवान का नाम लेकर चल पड़े। गाड़ीवान उनके साथ तरह तरह की बातें करने लगा। सरल हृदय और निष्कपट हृदय से रामतारण बाबू ने सारी बातें उसको कह डाली। यहां तक कि ये भी बता दिया कि वो परिवार सहित विवाह में जा रहा है और उसके पास गहने कपड़े और कुछ धनराशि भी है। बैलगाड़ी धीरे धीरे एक वन के बाद दूसरे वन, एक मैदान के बाद दूसरे मैदान को पार करती हुई एक निर्जन स्थान पर पहुंच गई। आगे एक नदी बह रही थी। किनारे पर पहुंचकर गाड़ीवान रुक गया। नदी में उस समय बड़ी भयानक धारा बह रही थी। गाड़ी से पार करने पर विपत्ति की संभावना थी। नदी बहुत गहरी नहीं थी लेकिन बहुत चौड़ी थी, अतः नदी पार करने में उन्हें बहुत डर लगने लगा। ये देखकर गाड़ीवान ने कहा, बाबूजी समीप ही हमारा परिचित गांव है, हम वहां से किसी को बुला लाते हैं, एक और आदमी की सहायता से नदी को आसानी से पार किया जा सकेगा। गाड़ीवान ने उन्हें गाड़ी से उतारकर बैलों को खोल दिया और बैल छुट्टी पाकर आनंद से नदी के किनारे घास चरने लगे। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ीवान एक दूसरे आदमी को साथ लेकर वहां पहुंचा। उस दूसरे आदमी की मुखाकृति भी गाड़ीवान की तरह अत्यंत डरावनी लग रही थी। उन दोनों की क्रूर दृष्टि देखकर चक्रवर्ती जी मन ही मन में डरने लगे। गाड़ीवान और उसका साथी दोनों समीप आकर सामने खड़े हो गए और बोले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुरंत दे दो, नहीं तो इस छुरे से तुम्हारा काम तमाम करके नदी में डुबो दिया जाएगा। चक्रवर्ती महाशय उनकी पत्नी और बेटी के डर से होश ही उड़ गए। दोनों डाकू छुरे हाथ में लिए चक्रवर्ती की ओर बढ़े। उन्होंने बहुत अनुनय विनय उनकी ओर बढ़े। चक्रवर्ती जी परिवार सहित रोते रोते विपत विदारण भगवान मधुसूदन को जोर जोर से पुकारने लगे। डाकुओं ने जैसे ही छुरे से प्रहार करने की कोशिश की, उसी समय अचानक एक विचित्र घटना घटी। दोनों बैल जो पास ही घास चर रहे थे, सिंग नीचे करके बिजली की तरह डाकुओं पर टूट पड़े और दोनों डाकुओं को लहूलुहान कर दिया। दोनों वेदना से छटपटाते हुए मिट्टी में लौटने लगे। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी अचंभित थे। इसी समय कुछ और यात्री भी उस स्थान पर आ पहुंचे। जब उन्होंने सारा वृतांत सुना तो वो विस्मय से किम कर्तव्य विमूढ़ होकर पत्थर के समान स्तब्ध रह गए। डाकुओं को पुलिस के हवाले करने के पश्चात चक्रवर्ती जी दूसरे यात्रियों की सहायता से एक दूसरी बैलगाड़ी से गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। अदालत में मुकदमा चलने पर दोनों डाकुओं को कठोर कारावास मिला। चक्रवर्ती जी ने उन दोनों बैलों को अपने घर पर रखकर उनकी खूब सेवा की। कभी कोई उस घटना के विषय में उनसे पूछता तो वो भक्तिभाव से कहते, कौन कहता है कि भगवान जीव की करुण प्रार्थना नहीं सुनते, नहीं तो उनके बिना इन दो अबोध प्राणियों को दोनों डाकुओं का दमन करने के लिए कौन प्रेरित करता, ये यंत्र हैं, वो यंत्री हैं। बस इतना कहते कहते चक्रवर्ती जी के नेत्रों में भावावेश में अश्रुधारा बहने लगती।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर डॉक्टर हुकम शर्मा के थे। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं FM शिमला के साथ। और FM शिमला पर चलिए अब आपको बता दें कि आज FM शिमला से आप कौन कौन से कार्यक्रमों को किस समय पर सुन सकते हैं।

आपको बता दें, आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है योग और आहार। इस विषय पर डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय से डॉक्टर हुकम शर्मा की बातचीत आप सुन सकते हैं। देश और दुनिया की हर एक जानकारी जानने के लिए सुनिएगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और ये समाचार आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे से 12:10 तक, 1 बजे से 1:10 के मध्य, दोपहर 2:15 पर, 7:05 पर, रात 11 बजे से 11:10 के मध्य, सुबह 8 बजे से 8:30 के मध्य, और रात 8:45 से 9:15 के मध्य। इसके अलावा आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, 6:30 और 7:45 पर, और आकाशवाणी FM शिमला से सुनिएगा FM न्यूज़ हेडलाइंस सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर। कुछ नए और पुराने फिल्मी नगमों के साथ हाजिर होंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम में सुबह 9 बजे, दोपहर 12:10 पर, 1:10 पर, 3:10 पर और शाम 8:30 पर। सुबह 9:30 पर आनंद लीजिए कुदरत के रंग कार्यक्रम का, और आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे सदाबहार गीत कार्यक्रम। 11:05 पर पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। शाम 8 बजे भूले बिसरे गीत, और 10:30 पर रात्रि आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का मिला जुला संगम गुड मॉर्निंग शिमला। सुबह 8:32 पर लोक संगीत कार्यक्रम सुनेंगे आप, 11:30 का समय रहेगा पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का, और दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। दिन में 2 बजे सब रंग कार्यक्रम सुन पाएंगे आप, और 2:30 पर सुनिएगा शिखरों के स्वर, और आज दोपहर 3:05 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। युवा दोस्त सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम दोपहर 3:30 पर,

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे 5:30 बजे मंडियाले गीत और पंगवाली कार्यक्रम सुनिएगा 5:20 पर, और कुछ लोकगीतों का आनंद उठाइए 5:50 पर। 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम सुन पाएंगे आप, और 6:35 पर आप सुनेंगे लाहौली कार्यक्रम। तो वहीं 7:10 पर किसान और बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे दिल की आवाज भी सुन कार्यक्रम और 10 बजे आनंद लीजिए दिलकश गजलों का। तो ये है वो कार्यक्रम जो आज आप सुनेंगे आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर, और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। समय की सुइयां गवाही दे रही है कि घड़ी में समय हो गया है आपके अपने कार्यक्रम यानी गुड मॉर्निंग शिमला का। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर डिंपल ठाकुर, और आपका अपना कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग शिमला। और आज के इस प्रोग्राम में सूचनाओं का कारवां सजेगा, यादों के झरोखे खुलेंगे और सुरों का एक ऐसा सिलसिला चलेगा जो आपके पूरे दिन को खास बना देगा। तो चलिए इस शानदार सफ़र का आगाज करते हैं आज के एक मुकम्मल विचार के साथ। और आज का हमारा जो विचार है वो सीधा आपके इरादों को मजबूती देने के लिए है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कितनी अजीब बात है ना, अक्सर हम संसाधनों का रोना रोते हैं। हम सोचते हैं काश हमारे पास कुछ और सुविधाएं होती तो हम कुछ और बेहतर कर पाते। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वे सुख सुविधाओं के दम पर नहीं बल्कि एक अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर हुए हैं। अगर आपके इरादे चट्टानी हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। तो उठिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और आज के इस नए दिन को अपनी मेहनत से एक नया मुकाम दीजिए। तो इसी उमंग को सुरों में डालते हैं और सुनते हैं आज कार्यक्रम में ये पहला गाना। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया। आप सुन रहे हैं इस वक्त गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम एफएम शिमला पर। और जो हमारे श्रोता अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। आज 18 जून है और शिमला की ये जो सुबह है वो बहुत ही हसीन है। पेड़ों के बीच से इस वक्त सूरज की किरणें धरती पर गिर रही है, ठंडी ठंडी बया चल रही है और पूरा शहर एक नई उमंग के साथ अपने कामकाज की ओर कदम बढ़ा रहा है। और आपके साथ साथ हम भी चल रहे हैं आपके लिए जानकारी और मनोरंजन लेकर आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में। तो आप हमारे साथ यूं ही सुनते रहिए एफएम शिमला।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
0: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: वक्त के पहिए ने इतिहास के गलियारों में जो निशान छोड़े हैं आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज 18 जून की तारीख भी देश और दुनिया के नक्शे पर कई महत्वपूर्ण मोड़ों की गवाह रही है। तो आइए पलटते हैं अतीत के वो पन्ने और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक बातें। ईयर 1576 की अगर हम बात करें तो आज ही की तारीख को मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। साल 1987 में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ईयर 1946 में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली शासन के खिलाफ गोवा के पणजी में सत्याग्रह शुरू किया था और इस दिन को गोवा में गोवा क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके अलावा 1815 में बेल्जियम में हुए ऐतिहासिक बाटरलू के युद्ध में ब्रिटिश और प्रशियाई सेनाओं ने फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट को करारी शिकस्त दी, जिससे उनके शासन का अंत हो गया। और 1928 में अमेलिया ईयरहार्ट विमान से अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला बनी। ईयर 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कॉर्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव के बीच सामरिक हथियार सीमा संधि यानी कि सॉल्ट टू पर वियना में हस्ताक्षर हुए। और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज की तारीख जो है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो आज की जो ये तारीख है वो बेहद भावुक और गौरव से भरी है, क्योंकि आज ही की तारीख को साल 1858 में अद्भुत साहस के प्रतीक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के लिए उनका ये सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाए है और ऐसी वीर और अमर वीरांगना को ये देश कभी नहीं भूलेगा। उनके इस बलिदान को हमारा शत शत नमन है। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर। और इस गाने पर जाने से पहले हमने बातें की थी इतिहास के पन्नों से, तो अब कार्यक्रम को थोड़ा और

आगे बढ़ाते हैं। आज 18 जून है और हम जानते हैं कि इस वक्त हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे होंगे जिनके घर में आज जश्न का माहौल होगा। शायद आज किसी का जन्मदिन है या कोई अपनी शादी की सालगिरह मना रहा होगा। आज का ये दिन आप सभी के लिए बहुत खास है और इस मौके पर FM शिमला की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये दिन आपकी ज़िंदगी में नई उमंग और खुशियां लेकर आए, हम बस यही कामना करते हैं। आप आज के इस दिन को अपने अपनों के साथ बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट करें और प्यार का जो ये सिलसिला है वो बस पूरी उम्र यूं ही चलता रहे, हमारी यही भी ये कामना भी है। और आपके घर आंगन में खुशियाँ यूं ही महकती रहे और आपके इन खुशियों को जो है चार चांद लगाने के लिए, आपके इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लिसनर्स के लिए जो आज अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
2: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

जीवन में भागदौड़ भरी इस जिंदगी से थोड़ा सा वक्त चुराइए अपने करीबियों के साथ, उनका हाथ थामिए और निकल पड़िए किसी खूबसूरत मोड़ पर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज मनाया जाता है दुनिया भर में इंटरनेशनल पिकनिक डे। वैसे जब जिक्र पिकनिक का हो और हम शिमला में बैठे हैं तो हमारा तो पूरा शहर ही एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। चाहे वो शांत हरी भरी वादियाँ हो और शिमला के साथ लगते मशोपरा के घने जंगल हो, नालदेहरा के हरे भरे मैदान हो, या फिर रिज पर धूप सेकते हुए अपनों के साथ गप्पे लड़ाना हो। आज का ये जो दिन है वो हमें याद दिलाता है कि खुशियाँ किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि हरी घास पर बैठकर घर से पैक किए हुए पराठे और अचार को अपनों के साथ शेयर करने में है। पिकनिक का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, ये बहाना है अपने मोबाइल स्क्रीन से नज़रें हटाकर अपनों के चेहरे को गौर से देखने का, ठंडी हवाओं को महसूस करने का और खुलकर मुस्कुराने का। तो अगर आज मुमकिन हो तो थोड़ा सा समय अपनों के साथ बाहर ज़रूर बिताइएगा और इस पिकनिक की खूबसूरत जो मूड बना है आज इस दिन पर उसे और अच्छा बनाते हैं और सुनते हैं ये शानदार गीत। आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: जी हम बिल्कुल पिकनिक ज़रूर मनाएं। आज की इस भागदौड़ भरी डिजिटल ज़िंदगी में जहां हम सब अपनी अपनी फ़ोन स्क्रीन्स और गैजेट्स में इतने खोए हुए हैं कि हमें बिल्कुल समय ही नहीं मिलता है अपनों के साथ बाहर निकलने का, तो आज का जो ये दिन है हमें एक खूबसूरत संदेश देता है कि हमें याद दिलाता है ये कि ठहरना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और पिकनिक मनाने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पिकनिक का असली मतलब है वो फुर्सत का पल जहाँ अपनों की हंसी हो, पुरानी यादें हो और बिना किसी काम के चिंता के बस एक दूसरे का साथ हो। और सच कहें तो हमारा जो शिमला है, शिमला की जो हसीन वादियाँ हैं, वो खुद ही इतनी हसीन जो है कैनवास तैयार करती है कि हमारे शहर का जो है हर एक कोना, हर एक ढलान अपने आप में किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। हमारा तो पूरा शहर ही एक जन्नत है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि फुर्सत के कुछ पल अपनों के लिए ज़रूर निकालिए। फिलहाल आज कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में बस इतना ही। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम शिमला।

0: एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर कल कांगड़ा जिला के पठियार में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित 2 मंजिला ई बस चार्जिंग डिपो व अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपए से पुनर्विकसित फवारा चौक का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरानखड़ क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री दाड़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों व प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों

0: के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में कल से तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
5: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
6: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
4: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
7: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
4: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोप

0: आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त

0: हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: We have a huge pool of talent.
4: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
5: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
6: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10। उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क। केंद्र सरकार ने कहा, टेलीग्राम पर हो रही

0: हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते

0: diversity shines as well, says the Indian Express. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend VivaTech Summit in Paris with French President Emmanuel Macron. PM Modi to also address members of Indian community in the French capital. President Draupadi Murmu to embark on a five-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for two Rajya Sabha seats from Jharkhand and one from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end the West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ. एफएम शिमला पर आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस. नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे. इसके अलावा चरानखड़ क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे. इसके उपरांत दारी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिला की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे. विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत देश भर से आए 63 युवा प्रतिभागियों को रिकांगपियो से लाहौल स्पीति व किन्नौर जिला के सीमावर्ती गांवों के लिए रवाना किया गया है. ये युवा सीमावर्ती गांवों में लोगों से वार्तालाप कर सामाजिक, सांस्कृतिक और जन जागरूकता गतिविधियों में भाग ले रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 12वें पैसापालू विश्व कप के लिए हिमाचल प्रदेश के दो खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. कुनिहार के सौरभ शर्मा और रामशहर के अंकुश राजपूत ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय स्क्वाड में जगह बनाई है. हिमाचल पथ परिवहन द्वारा तत्तापानी 16 मील बस सेवा कई महीने बंद रहने के बाद कल से पुनः बहाल कर दी गई है. जिला शिमला जूडो प्रतियोगिता 26 व 27 जून को शिमला के इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में आयोजित होगी. इसमें जिला भर से करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसके माध्यम से राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा. 3 वर्षों में सरकार ने दूध खरीद मूल्य में 21 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है. इस निर्णय के बाद किसानों में नया उत्साह देखने को मिला है और लोगों को डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है. इसका परिणाम ये है कि दिसंबर 2023 में जहां केवल 44 दुग्ध सहकारी समितियों से लगभग 6200 लीटर दूध एकत्रित होता था, वहीं आज ये बढ़कर 24,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है. साथ ही कांगड़ा क्लस्टर में 352 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है. राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां न मिलने को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है. यूनियन के सहकोषाध्यक्ष लेजराम ने कहा है कि उनका आंदोलन 24 जून तक जारी रहेगा और मांगे पूरी न होने पर 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी. न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही. नमस्कार.
3: अभी आप सुन रहे थे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस. 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ. और आइए अब सुनते हैं लोक संगीत कार्यक्रम. कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन गोपाल कृष्ण भारद्वाज की आवाज़ में.

बसंत लाल ठाकुर की आवाज़ में अभी आपने ये बिलासपुरी लोकगीत सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं ब्रह्मदत्त को और साथियों को इस सिरमौरी लोकगीत में।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम। विषय है योग और आहार। इस विषय पर आप सुनेंगे डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय से डॉक्टर हुकम शर्मा की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम में योग और आहार विषय पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी स्टूडियोज में आज हमारे मध्य हैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी। आप उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं शिमला में। डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, आकाशवाणी स्टूडियोज में हम आपका स्वागत करते हैं। और योग और आहार, ये हमारे जीवन के, या हम कहें कि वर्तमान जीवन शैली के, दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं दोनों ही। हमें बताएं आपकी, जो पहले तो योग पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये विषय कोई नया विषय नहीं है
2: जी
1: हम भारतीयों के लिए, और अब तो इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें योग को, तो कैसे इसकी परिभाषा हम प्रस्तुत करेंगे?
2: जी धन्यवाद आपको। योग के बारे में भारतीय जो वांग्मय है, भारतीय संस्कृति के जो साहित्य है, उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है। तो हम सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता से, मैं वहां से बात का शुभारंभ करना चाहूंगा, जिसमें ये कहा गया है योग है कर्मसु कौशलम
1: जी,
2: योगश्चित्त वृत्तिर निरोध है। तो पहला जो हम कह रहे हैं योग है कर्मसु कौशलम, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उनकी कुशलता का नाम योग है। दूसरा है योगश्चित्त वृत्तिर निरोध है, योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करने को योग परिभाषा दी गई। तो योग एक प्रकार से युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये, योग को आत्मविशुद्धि से भी जोड़ा जाता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को भी योग कहा जाता है। तो ये योग एक बहुत गहरा शब्द है, जिसे हम साधारण रूप से केवल मिलन नहीं है, ये एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा का संबंध को, सह संबंध को परिभाषित करने वाला एक शब्द है।
1: डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, देखिए योग तो अब जिसको कि हम एक भारत की पहचान कह सकते हैं शुरू से, अब तो ये विश्व स्तर तक पहुंच चुका है।
2: जी जी,
1: माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पर बहुत जोर देते हैं, और योग का जो महत्व हमारे जीवन में है एक अच्छी जीवन शैली के लिए, वो क्या समझते हैं?
2: देखिए हमारे जो, मैं आम भाषा में बात करना चाहूंगा, हमारे बुजुर्गों ने कहा 3 बजे जागे सो योगी, 4 बजे जागे सो संत, 5 बजे जागे सो महात्मा, 6 बजे जागे सो भगत, बाकी सब ठगत।
1: क्या बात,
2: ये योग है।
1: हाँ।
2: योग का एक साधारण शब्दावली मैंने बताई, ये जो है खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे रुग्ण काहे को होए, ये भी योग का ही एक स्वरूप है। समय पर खाना पीना, समय पर सोना, ये योग है
1: जी।
2: योग कोई खाली आसन प्राणायाम करना या किसी प्रकार का परिश्रम करने को योग नहीं है, योग एक बहुत विस्तृत व्यापक शब्द है
1: जी।
2: तो उसमें आपकी जीवन शैली, आपका आहार विहार और बड़ा सब चीजें उसमें समाविष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता में योग का जो बताया, आहार बताया 17वें अध्याय में, वहां पर कहते हैं कि सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। तो सात्विक के लिए बताया कि आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा, सात्विका प्रिय, सात्विक लोगों को ऐसे आहार पसंद होते हैं। तो ये जो योग वाले लोग होते हैं, जो योगिक जीवन जीने वाले होते हैं, उनको सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है, उसमें इन सब बातों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, और सभी को एक प्रकार से एक ऐसा शब्द है योग, जिसके अंतर्गत ये सारे और सारी बातें उसमें समावेश हो जाता है
1: जी। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि केवल मात्र जो योगासन हम करते हैं
2: जी,
1: एक आम व्यक्ति के

0: ये तो वही योग है, लेकिन आपने तो कह दिया कि जीवन में जितने भी अनुशासनात्मक कार्य
1: जी
0: जो
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल सही आपने पकड़ा कि
0: वो सही
1: वही
0: सभी
1: योग है।
0: सभी जो है
1: अनुशासनात्मक
0: वो
1: कार्रवाई जो है, हम कहते हैं कार्य जो भी है, हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक शब्द है प्रज्ञा अपराध, एक शब्द आता है चरक संहिता में, जगह जगह पर ये लिखा हुआ है प्रज्ञा अपराध। आप यदि अपनी प्रज्ञा से, प्रज्ञा कहते हैं एक प्रकार की बुद्धि
0: जी। चलिए, आसनों पर भी
1: जी
0: हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आहार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है ना जीवन में।
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कहते भी हैं कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, और तरह तरह
1: जैसा
0: की
1: खाए अन्न वैसा होगा मन,
0: जी
1: जैसा
0: जी
1: पिए पानी वैसी होगी वाणी, ऐसा बुजुर्गों ने
0: जी
1: कहा।
0: जी जी तो क्या समझते हैं आपके आहार का
1: आहार
0: क्या?
1: तो इस जो बुजुर्गों ने हजारों वर्षों से जो सतायु हुआ करते थे, वो ये कहते थे खाए चना रहे बना, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, बुला दे सब हेकड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जो हजारों वर्षों से जो टाइम टेस्टेड बातें हैं, जो भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया को अद्भुत देन है, वो उन बातों की हम चर्चा करने बैठे हैं।
0: जी
1: हम तो
0: जी
1: उन बातों को इस समय उजागर करना चाहते हैं कि जिनका ज्ञान हमारे पूर्वजों को होता था। हमारे पूर्वज जो है असाधारण थे। क्यों थे? शतायु होते थे, क्योंकि उनकी एक जीवन शैली थी। समय पर खाना पीना था, समय पर सोना था, संयमित जीवन वो लोग जीते थे। हर बात नियमों से बंधी हुई थी। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। संध्या
0: जी
1: काल में हमारे ऋषियों ने कहा कि संध्या काल में पांच कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों को बहुत अच्छे से ज्ञान था, एतानि पंचकर्माणि संध्यायाम वर्जयेत बुद्धे। बुद्धिमान आदमी को ये पांच कार्य नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम संपाटम गति मध्वनि। आहार, मैथुन, शयन और पैदल चलना, ये पांच बताया।
0: जी
1: निद्रा, सोना भी नहीं चाहिए,
0: जी जी
1: पढ़ना नहीं चाहिए, संपाटम गति मध्वनि। तो ये कहा, तो इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते थे। बुजुर्गों का ये भी ज्ञान था कि रात को भोजन नहीं करना चाहिए। नरकस्य एतद् द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम। रात्रि भोजन को नरक का द्वार बताया है। रात को
0: जी
1: जो लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, आज इतनी बीमारियां क्यों फैली हुई हैं? क्योंकि लोग रात्रि भोजन करते हैं, निशाचर हो चुके हैं, 12 बजे भी डिनर कर रहे हैं, खाने का कोई पता नहीं है। आयुर्वेद के जो ऋषियों ने और हमारे बुजुर्गों ने जो टाइम टेस्टेड बताई, रात के समय दालें मत खाइए, बेसन मत खाइए, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, जमीकंद, फलों का रस, ये सब निषेध, अचार, मुरब्बे,
0: जी
1: रात
0: जी
1: को निषेध है। हम लोग इनको भूल रहे हैं। तो योग से बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। यदि आप रात्रि भोजन करते हैं तो आप योगी कैसे होंगे?
0: जी
1: आप प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं, आप बुद्धि का एक अपराध कर रहे हैं, तो आप बीमार रहेंगे, अन्यथा आप बीमार पड़े रहेंगे, आपका उपचार नहीं हो पाएगा।
0: लेकिन हर व्यक्ति रात को भोजन तो करता ही है, तो आप क्या
1: उस
0: सुझाव देंगे कि किस वक्त तक हमें
1: ये
0: रात्रि
1: कहा
0: करना
1: है
0: चाहिए?
1: सायं भुक्त्वा लघुहितम, अष्टांग संग्रह 5वीं शताब्दी का ग्रंथ है, उसमें लिखा है सायं भुक्त्वा लघुहितम सबाहितम मनः शुचि। शाम को हल्का और हितकारी भोजन करें, शाम को करना है,
0: जी
1: रात्रि
0: जी
1: में नहीं करना है। शब्द
0: जी
1: है सायं भुक्त्वा लघुहितम,
0: जी
1: अब रात को नहीं करेंगे, है ना?
0: मतलब आप समय कुछ निर्धारित करते हैं
1: आप
0: कि
1: समय
0: जैसे
1: निर्धारित कीजिए।
0: सर्दियों के
1: भोज
0: दिनों में तो देखिए जल्दी
1: बिल्कुल
0: शाम हो जाती
1: देखिए
0: है।
1: 6:30 से 7 बजे के बीच तक आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए, और वो भी हल्का भोजन होना चाहिए। शाम के समय जो मैंने निषेध बताए, उनका प्रयोग न करें। आज पूरी मानवता, मानवता की बात नहीं करें, हम पूरे भारत की बात करें, तो चाय के भीषण उसमें माया जाल में भारतीय डूबा हुआ है। चाय की पत्ती, चीनी, नकली दूध, एक प्रकार से दूध मिलावटी आ रहा है, वो सब
0: जी
1: मिल रहा है। वो सारा सुबह से शाम तक वो प्याले दर प्याले पीता जाता है। और फिर ऐसे परिप्रेक्ष्य में हम योग की बात करें, वो कितना समीचीन होगा, कितना प्रासंगिक है, ये
0: जी
1: विचारणीय है कि आप दिन भर चाय के प्याले पी रहे हैं, वो सब कैंसर पैदा कर रहे हैं।
0: जी तो आजकल तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या युवा वर्ग हैं, फास्ट फूड का जमाना
1: जी
0: भी
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: आ
1: जी
0: चुका
1: जी
0: है, और
1: जी
0: उसमें किस किस तरह के पदार्थ हम उपभोग करते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो इसके बारे में भी
1: देखिए,
0: हमारे श्रोताओं को
1: फास्ट
0: जागरूक
1: फूड तो
0: करें।
1: इस समय पूरा जो है विश्व इस समय भयंकर स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहा है। लेकिन इसमें ये कहते हैं कि जब तक आप आयुर्वेद की ओर, हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की ओर, हमारे योग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप 100 साल नहीं जी सकते। ये
0: जी
1: क्योंकि सारे नियम बने हुए हैं, पिज्जा, हॉट डॉग, बर्गर, मोमो, चाउमीन,
0: जी जी
1: स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, डोनट्स, डिमसिम, कैसे कैसे नाम है।
0: जी
1: इटली से पिज्जा आ रहा है,
0: जी
1: अमेरिका से कोई और आ रहा है,
0: जी जी
1: और सब फ्रांस से कुछ और फास्ट फूड आ रहा
0: जी
1: है, चाइना नूडल्स हमें भेज रहा है। हमारी अपनी जो विरासत थी वो किधर गई? हम जो
0: जी
1: हमारे भारतीय संस्कृति के जो बहुत पोषक तत्वों से भरपूर जो हमारे आहार हुआ करते थे, वो किधर गए? उनका कहीं चिंतन नहीं है, लेकिन अब फिर से चिंतन होने लग गया है। आप देख रहे होंगे मिलेट्स पर पूरा ध्यान है, आज
0: जी
1: लोग गेहूं छोड़ते जा रहे हैं, आज लोग जो है कोदा, कंगनी, ओगला, फाफरा, ये सब चीजें इनकी रोटियां बनने लगी हैं।
0: जी
1: जो चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सिंघाड़ा, चौलाई, फिर से लोगों की

0: रसोई में स्थान प्राप्त करने लगे हैं। तो ये बदलाव का युग है, क्रांति का युग है। लोग भ्रांतियों से मुक्त होकर के अब क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आहार में भी एक क्रांति आ रही है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो योग ने जो भारत में परिवेश में योग का परिवेश बना, उसका एक प्रभाव है कि लोग आहार के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो गए। मोटापा, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन बढ़ना, ऐसे भयानक बीमारियां लोग चपेट में आ गए। उसका परिणाम ये रहा कि जब लोगों को समझ में आया कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनका इलाज क्या है, एकमात्र आहार और जीवन शैली में परिवर्तन है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, रोज सवेरे जल पिए, भोजन के संग छाछ
1: जी,
0: दूध पिए, फिर रात को रोग ना आवे पास। सिंपल बात है, साधारण बात है। आप सुबह उठते ही पानी पीजिए, वाटर थेरेपी है। योग में यही सिखाया जाता है, नियमित रूप से यदि आप पानी पीते हैं। आज पूरी दुनिया का ध्यान शरीर को डिटॉक्स करने पर लगा हुआ है, उन तरीकों को खोजा जा रहा है। भारत में तो हजारों सालों से हल्दी है, गोमूत्र है। आप बॉडी को डिटॉक्स करिए डेली, सुबह उठ करके यदि आप पानी पीते हैं 2-3 गिलास भी, तो आपके शरीर में एक अद्भुत जो है उस चैतन्य का प्रादुर्भाव होता है और आपके शरीर से विष जातीय तत्व और टॉक्सिन्स, आम, कफ, मेद, मल, कीटाणु और विष, उनका निर्हरण शरीर से होता जाता है स्वाभाविक रूप से। आज लोग क्यों कैंसर पीड़ित हैं, आज लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों की चपेट में क्यों हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि हमारे शरीर को डिटॉक्स नहीं किया जा रहा है। हम लोग असंयमित जीवन शैली, हम हमारे ही बुजुर्गों के द्वारा बताई गई बातें। मुझे एक शेर याद आ रहा है,
1: जी जी,
0: जरासी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं।
1: क्या बात,
0: इतनी साधारण भाषा है। जहां तक काम चलता हो गिजा से, गिजा कहते हैं डाइट, जहां तक आपका हकीम साहब 200 वर्ष पहले बोल कर गए, जहां तक काम चलता हो गिजा से तो वहां तक चाहिए बचना दवा से।
1: जी,
0: जहां तक आपका काम डाइट से चल रहा है तो आप दवाई से बच के रहिए। फिर ये कहा कि हकीम साहब बोलते हैं कि अगर हो जिगर में गर्मी का एहसास तो मुरब्बा, आंवला खा, अनानास, पाइनएप्पल खाइए।
1: जी,
0: ज्यादा है अगर दिमागी तेरा काम तो खाया कर शहद के साथ बादाम।
1: क्या बात,
0: पुराने लोग इनको ध्यान रखते थे। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो हम ही है जो थम है गिरती दीवारें।
1: जी,
0: वरना बुजुर्गों की निशानी सलीके से कौन रखता है। हम लोग इसको सहेज रहे हैं और इसको जो है आज अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की नितांत आवश्यकता है। अगली पीढ़ी निश्चित रूप से फास्ट फूड की कल्चर के कारण हमारा सामाजिक परिदृश्य पूरी तरह से भ्रष्ट हो रहा है, नष्ट भ्रष्ट हो रहा है।
1: तो ये तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, योग की बात हुई या मिलिट्स की बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन दोनों ही विषयों को बड़े अच्छे तरीके से लोगों के बीच में, लोगों तक पहुंचाया है और रुझान लोगों का बढ़ा भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कहते हैं उसका एक असर तो लोगों पे होता ही है,
0: सीधे सीधे।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की भी चर्चा की और क्या खान पान हमारा होना चाहिए उसकी भी आपने बखूबी चर्चा की। थोड़ा सा योगासन की भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारे एक जीवन का एक बड़ा अभिन्न अंग है, क्योंकि अगर हम योगासन करते हैं वो भी तो हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं।
0: जी जी जी,
1: किस तरह?
0: देखिए, योग बताया है, अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग है। तो अष्टांग में आसन प्राणायाम का भी स्थान है।
1: जी,
0: तो उसका अलग अलग इफेक्ट है। आसनों से जो है हमारे शरीर का जो स्केलेटन तंत्र है, उसको कहते हैं अस्थि बाय कोष जो है, उस पर चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं।
1: जी,
0: एक प्रकार से बृहत्व शब्द का है आयुर्वेद में। व्यायाम करने से, आसन इत्यादि करने से शरीर में बड़प्पन की भावना पैदा होती है, शरीर का विस्तार होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। एक प्रकार से फिजिकल शरीर की बात है आसन में। प्राणायाम में और भी जो है मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, वहां पर कार्य होता है प्राणायाम के द्वारा। तो हमारे पास इसमें आसन हमारे करते आ रहे हैं, आयुर्वेद का भी एक हिस्सा है, हमारे पाठ्यक्रमों में भी यह होता है, और जो लोग नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं उनको इसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, आसन प्राणायाम को, इनको हमारे जीवन में। लेकिन इससे पहले आपको यम नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यम और नियम जो है, जब ये पूरे होंगे तभी आपको आसन और प्राणायाम के लाभ, अच्छे लाभ, बहुत संपुष्ट लाभ जो है वो तभी प्राप्त हो सकेंगे जब आप इनका यम और नियमों का पालन करेंगे। तो योग एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सारे नियमों के तहत है सारा काम, नियमों से बाहर कुछ नहीं है। ये भी पूरा जैसे ज्योतिष विज्ञान है, जैसे आयुर्वेद है, नियमों में बंधा हुआ है। आयुर्वेद की हर बात नियमों में है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो ये जो योग है, हम इसको एक प्रकार से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट मानते हैं। योग से क्या होता है, योग कोई दवा नहीं है, इसको कहते हैं ड्रगलेस थेरेपी, उसके अंतर्गत इसका समावेश है, अनौषध चिकित्सा, बिना दवा के हम कैसे उपचार करें। तो योग से क्या होता है, ये बिना दवा के उपचार है।

0: इसमें आप जो भी करेंगे आपको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद के दो पहलू हैं, एक है प्रिवेंटिव, एक है क्योरेटिव। ये क्या है कि प्रिवेंटिव तो है जबरदस्त, क्योरेटिव भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना दवा के उपचार है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, इन सबसे इलाज करते हैं।
1: जी
0: कुदरत, प्रकृति के नजदीक आप रहेंगे। योगी, इसलिए तो कहा भगवद गीता में, श्रीमद भगवत, तस्माद योगी भवार्जुने, ये हे अर्जुन योगी बनो।
1: जी तो डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय जी, कार्यक्रम में समय हमारे पास इतना ही था। वैसे तो बहुत सी बातें अभी और भी आपसे जाननी थी, लेकिन विकल्प खुले रहते हैं। किसी और कार्यक्रम में ज़रूर जो बातें आज रह
0: जी
1: गई
0: जी
1: हैं हम ज़रूर उनकी भी चर्चा करेंगे। आज आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आए और आपने योग और आहार पर जो जानकारियाँ तमाम हमारे श्रोताओं को दी, वो हमें पूरा विश्वास है कि उसका लाभ लोगों को होगा। आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। विषय था योग और आहार, और इस विषय पर आपने सुनी डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय से डॉक्टर हुकुम शर्मा की बातचीत।
3: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
4: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
3: नियम और शर्तें लागू।
2: आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ, और आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में दिल है तुम्हारा फिल्म का समीर का लिखा हुआ गीत, नदीम श्रवण का संगीत बद किया हुआ।

ना तुम जानो ना हम, इस फिल्म का ये गाना भी आपने एंजॉय किया पमेला जैन और उदित नारायण की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप हैं एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब समय है आपको ये बताने का कि आप आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को सुन सकते हैं।

साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। आप हैं FM शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और अब समय है आपको ये बताने का कि आप आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सुरपेला कार्यक्रम में आज अंशुल शर्मा से गायन और राग रहेगा चारू केशी। सुबह 10 से 11 के मध्य आनंद लीजिए रिमझिम कार्यक्रम का और आज सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार एकांश की प्रस्तुति हर खेत को पानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बदलती हिमाचल की खेती। सुबह 11:15 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं फिल्म संगीत में दोपहर 12:10 पर 2:45 पर शाम 8:15 पर और रात 10:00। दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम और 1:10 पर सुनिएगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम। 2:00 सुनहरी किरणें कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और हिमगुंजन कार्यक्रम का समय रहेगा 2:30 का। 3:05 पर आज आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे चंबियाली कार्यक्रम 4:20 पर। 4:50 का समय रहेगा मंडियाली कार्यक्रम का। पंगवाली कार्यक्रम 5:20 पर और 5:50 पर लोकगीत आप सुन सकते हैं। 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम और 6:35 पर आप सुनेंगे लाहौली कार्यक्रम। रात 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर सुनिए इनसाइट्स। तो ये वो कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रम रहेंगे जो आज आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। और अभी आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।

0: बुढ़ापे का सहारा,
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल,
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
5: अच्छा, इसमें क्या होगा?
4: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
5: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
4: नहीं।

0: बिल्कुल नहीं, जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। 99,446 करोड़ रुपये की कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रुपये से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधानों उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधानों उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इनविटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरान खड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 सरकारी कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी खेलो इंडिया चिट्टा मुक्त अभियान के माध्यम से युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार

0: सरकार दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हागरंग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया और देनदारियां नहीं दी गई। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारियों के प्रति एकजुट होने का आह्वान भी किया। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
1: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व प्रदेश के कई भागों में वर्षा होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज बारिश, अंधड़, बिजली गिरने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का अनुमान लगाया है। देश के विभिन्न राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पर्यटक भारी तादाद में प्रदेश के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। राजधानी शिमला व मनाली सहित राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा हुआ है। इससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग काफी खुश हैं। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले के खजियार व डलहौजी सहित अन्य पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। हालांकि लोगों को जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है।
2: चंबा जिला की हसीन वादियों का दीदार करने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं देने का जहां दावा करता है, वहीं कई स्थानों पर स्थिति इसके विपरीत है। जिला के पर्यटन स्थल खजियार और डलहौजी में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पर्यटकों ने सरकार को पर्यटन सीजन के दृष्टिगत पहले से पर्यटन स्थलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने की सलाह दी है। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पर रोक, नियुक्ति पत्र जारी करने और ज्वाइनिंग पर भी पाबंदी। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, जल विद्युत परियोजनाओं में रियलिटी बढ़ाए केंद्र। हाईकोर्ट ने हटाई सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं। दैनिक जागरण की एक खबर है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना से बाहर होंगी कई महिलाएं। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, प्रदेश में फिर बरसे बादल, एक सप्ताह में सामान्य से 15% ज्यादा बारिश। अंत में

मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कल करेंगे वितरित। कांगड़ा जिला में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता। 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व कई क्षेत्रों में वर्षा के बाद तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किए जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ, और स्टूडियो की घड़ी इस वक्त इशारा कर रही है कि वक्त आपके अपने कार्यक्रम का हो गया है। जी हाँ, कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं डिम्पल ठाकुर आपके साथ, आपकी रेडियो सेट 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का ये जो दिन है, आज की जो ये सुबह है, बेहद ख़ास है। खिड़की से बाहर थोड़ा सा ज़रा झांक के तो देखिए, हल्की गुनगुनी धूप है और पेड़ों के पत्ते हवा में झूम रहे हैं, पहाड़ों की ठंडी हवा सीधे दिल को छू रही है। और जानते हैं आज तारीख क्या है? बिल्कुल जी, आज तारीख है 18 जून, यानी आज है इंटरनेशनल पिकनिक डे। रोज़मर्रा की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थोड़ा सुकून चुराने का दिन, चटाई बिछाकर अपनों के साथ टिफिन शेयर करने का दिन, और प्रकृति की गोद में बैठकर ठहाके लगाने का दिन। तो आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, बल्कि हमारे अपने शिमला ज़िले के उन बेहतरीन शांत और ऐतिहासिक पिकनिक स्पॉट्स की सैर करेंगे जो शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से, शहर की भीड़ भाड़ से दूर सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपना पिकनिक बास्केट आप तैयार रखिए, क्योंकि आज का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है। तो चलिए फिर सफ़र की शुरुआत करते हैं इस रूहानी नगमे के साथ। आप भी बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और फ़िलहाल आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम क्या ये पह

कार्यक्रम कुदरत के रंग में आज हम इंटरनेशनल पिकनिक डे की बात कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं शिमला के पास के कुछ जादुई पिकनिक स्पॉट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जो शिमला की रीढ़ यानी दरुज से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्ना रेल की। समुद्र तल से लगभग 6,117 फीट की ऊंचाई पर बसा ये विशाल मखमली हरा मैदान ब्रिटिश काल से ही पिकनिक, पोलो और क्रिकेट का गवाह रहा है। यहाँ सेना का एक बेहद खूबसूरत हेरिटेज म्यूजियम भी है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर जा रहे हैं तो देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा ये शांत मैदान और वहाँ दौड़ती गिलहरियाँ आपके पिकनिक का मज़ा दोगुना कर देगी। बस ध्यान रखिएगा, ये एक आर्मी एरिया है तो इसलिए डिसिप्लिन और यहाँ की साफ सफाई का भी खासा ख्याल आपको रखना होगा। शिमला में स्थित अन्ना रेल ये एक जो है समतल घाटी है जिसका उपयोग जो है 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश काल के दौरान मनोरंजन और खेल के मैदान के रूप में व्यापक रूप से किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश प्रशासन से इसके जुड़ाव के कारण इसे स्थानीय रूप से कंपनी का बाग के नाम से भी जाना जाने लगा। इस स्थल से जुड़े अभिलेखों में इसे सार्वजनिक आयोजनों और पोलो और क्रिकेट सहित संगठित खेलों के स्थल के रूप में वर्णित किया गया है और ये टूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट के शुरुआती वर्षों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 1888 में शुरू हुआ और बाद में शिमला से स्थानांतरित हो गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट की। आज अन्ना रेल क्षेत्र में भारतीय सेना की सुविधाएं शामिल है। यहाँ आने वालों की पहुंच पूरे मैदान में जो है आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कुछ एक जगह पे आप कर सकते हैं और आसपास जो आपको खुला मैदान यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आप प्रकृति की गोद में कुछ पल अपने अपनों के साथ फुर्सत के बिता सकते हैं और ख़ास करके पिकनिक के लिए ये एक अच्छी जगह है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो कि बिल्कुल निकटतम ही है। ख़ास करके अगर हम बात करें हवाई अड्डे की तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, बाहर से आ रहे हैं, शिमला के बाहर से आ रहे हैं, तब भी आप बाय बस, बाय कैब और यहाँ पर जो है पहुँच सकते हैं। आप शिमला आइए, शिमला के साथ ही अन्ना रेल है और आप यहाँ पर जो है घूम सकते हैं। अगर आप शिमला में ही रहते हैं तो आज के दिन अपने अपनों के साथ ज़रूर कुछ पल फुर्सत के यहाँ पर बिताइएगा।

कुदरत के रंग कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जिक्र कर रहे हैं आज इंटरनेशनल पिकनिक डे का और बात कर रहे हैं शिमला के आसपास की ऐसी कौन सी जगह है जो आप कम समय में और कम बजट में यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं। बात पिकनिक की हो रही है तो ये सिर्फ घूमने फिरने और आनंद लेने का ज़रिया नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन के लिए भी फायदेमंद होती है। रोज़ाना की भाग दौड़ और तनाव से दूर कुछ समय प्रकृति के बीच बिताने से मन को शांति मिलती है और ताजगी महसूस होती है। पिकनिक परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर हमें देता है, जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शहर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और मनोरंजन की अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध है। खास बात तो यह है कि पिकनिक सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि व्यक्ति की सेहत और सामाजिक ताने बाने के लिए भी ज़रूरी है। विशेषज्ञों की माने तो पिकनिक कार्टिसोल हार्मोन्स के स्तर को कम करने में मदद करता है, जिससे चिंता और मानसिक थकान कम होती है। तो चलिए अब शिमला से थोड़ा दूर यानी कि लगभग 10 से 11 किलोमीटर दूर आपको एक जगह बताते हैं जिसे कुदरत ने सबसे सच्चे रंगों से सजा के रखा है। जी हाँ, इसे शिमला का क्वाइट ट्विन भी कहा जाता है और बात कर रहे हैं हम मशोबरा की। मशोबरा में सीपुर नामक एक जगह है जो पिकनिक के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और एक बिल्कुल शांत जगह है। सेब के बागीचों की खुशबू और चिड़ियों की आवाज़ों के बीच जब आप अपनी चटाई बिछाएंगे तो सारा तनाव कम हो जाएगा। अब जिक्र पिकनिक का हो रहा है तो नालदेहरा का जिक्र ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। शिमला से लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालदेहरा अपने ऐतिहासिक होल गोल्फ कोर्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साल 1903 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन इस जगह की खूबसूरती से इतने सम्मोहित हुए कि उन्होंने यहाँ इस गोल्फ कोर्स की नींव रख दी। समुद्र तल से लगभग 7,200 फीट की ऊंचाई पर देवदार के विशाल पेड़ों के बीच ढलुआ हरी घास के मैदान किसी स्कॉटिश लैंडस्केप जैसे लगते हैं। यहाँ आप घोड़ों की सवारी का आनंद ले सकते हैं, पेड़ों की छाँव में बैठकर घर से लाया हुआ खाना आप खा सकते हैं। यकीन मानिए, इससे बेहतर पिकनिक स्पॉट ढूंढना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा।

और अगर आप अपने पिकनिक में जोड़ना चाहते हैं थोड़ा एडवेंचर, तो आप रुक कर सकते हैं कुफरी का, और कुफरी के साथ लगे फागू क्षेत्र का। जी हाँ, यहाँ पर आप घूम सकते हैं कुछ पल फुर्सत के, आप यहाँ पर बिता सकते हैं। और अगर फागू की हम बात करें तो हमेशा कोहरे और बादलों की चादर ओढ़े रहती है ये जगह। अगर आप बादलों के बीच बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए पिकनिक मनाना चाहते हैं, तो फागू से बेहतर जगह शायद ही आपके लिए कोई हो सकती है।

और चलते चलते आपको एक मैसेज हम ज़रूर देना चाहते हैं, एक दिली गुजारिश हमारी आपसे रहेगी कि जब आप इन जगहों का रुख करें तो इन जगहों की साफ सफाई का भी खासा ख्याल रखें। कुदरत हमें ये खूबसूरत रंग मुफ्त में देती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इसकी हिफाजत करें। आज जब आप इस खूबसूरत जगहों पर जाएं तो अपने साथ एक खाली बैग ज़रूर रखें। सारा कूड़ा कचरा, प्लास्टिक की बॉटल्स और रैपर्स उसी बैग में डालें और डस्टबिन में ही डिस्पोज करें। लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स, टेक नथिंग बट मेमोरीज, यानी पीछे सिर्फ अपने कदमों के निशान छोड़ें, कचरा नहीं, और साथ सिर्फ खूबसूरत यादें ले आएं।

0: तो आज कार्यक्रम कुदरत की रंग में बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं स्वाति अग्निहोत्री। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन बच्चों को गलत सूचना, डीप फेक और साइबर खतरों से बचाने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि AI तकनीक तक पहुंच सभी देशों के लिए समान और लोकतांत्रिक होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसकी राशि वितरण PMVBRY के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कांगड़ा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा चरानखड क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के लिए लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का भी उद्घाटन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वे व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी सूरत में बंद नहीं की जाएगी। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है और देनदारियां नहीं दी हैं। उन्होंने कर्मचारियों से अपने अधिकारों के प्रति एकजुट होने का आह्वान किया है। सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है और इसके अलावा

0: सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात व प्रदेश के कई भागों में वर्षा होने के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में आज बारिश, अंधड़ और बिजली गिरने व ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान लगाया है। हिमाचल पथ परिवहन द्वारा तत्तापानी 16 मील बस सेवा कई महीनों बंद रहने के बाद कल से पुनः बहाल कर दी गई है। जिला शिमला जूडो प्रतियोगिता 26 और 27 जून को शिमला में इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर में आयोजित होगी। इसमें जिला भर से करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके माध्यम से राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: और एफएम शिमला पर आइए हम और आप सब मिलकर सुनते हैं कुछ सदाबहार नगमे सदाबहार गीत कार्यक्रम में।

जिंदगी एक सफ़र है सुहाना जी, बिल्कुल ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो काफ़ी सुहाना बना रहे, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं चलते चलते ये बहुत सारे म्यूज़िकल ट्रैक आपके लिए FM शिमला पर। क्योंकि अगर सफ़र की बात करें तो शिमला में जब ट्रैफिक की बात आती है तो सफ़र में अगर गाने ना होना तो बिल्कुल ऐसे लगता है ना जाने हम कहाँ फंस गए हैं। और अगर गानों का साथ हो, इस तरह के बढ़िया बढ़िया से सॉन्ग प्ले करते रहें तो सफ़र कब कट जाता है इसका बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं चलता है। फिलहाल कार्यक्रम में एक और गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, आप बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और इस वक्त कार्यक्रम है आपका अपना सदाबहार गीत।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने कर्म फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

0: एफएम शिमला पर इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत कार्यक्रम।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर

0: घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सदाबहार गीत कार्यक्रम में अगला गीत अब सुनते हैं संजोग फिल्म से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने क्रांति फिल्म का ये गीत सुना और इसी गीत के साथ सदाबहार गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं फिल्म शिमला के साथ और अभी आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार करना है। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। इस योजना के माध्यम से देश भर में पहले ही 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर शिमला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को नशा मुक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जब युवा नशे जैसी बुराई की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्षों में नशा तस्करों की लगभग 51 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां जब्त की जा चुकी है और नशे से जुड़े मामलों में अभी तक 123 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधानों उप प्रधानों को नियम अनुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधानों उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इनविटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहारा योजना के एक लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखाकर उसकी पेंशन बंद कर दी गई, जबकि वह व्यक्ति जीवित है। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही बताया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई सहारा और हिमकेयर योजना के बजट में कटौती करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के नाको में सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर उन्होंने नाको में कला मंच का उद्घाटन भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हांगरग घाटी में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में पर्यटक इस क्षेत्र का रुख करें और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। राज्य सरकार द्वारा दूध के खरीद मूल्य में की गई बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। दूध के बेहतर दाम मिलने से कांगड़ा जिला के ढगवार प्लांट में प्रतिदिन 24,000 लीटर दुग्ध संग्रह हो रहा है। हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता ने बताया कि जिले में किसानों और बेरोजगारों के लिए दूध उत्पादन मजबूत व्यवसाय बन रहा है।
2: पशुपालन जो पहले केवल आजीविका का साधन माना जाता था, अब किसानों के लिए मजबूत व्यवसाय बनता जा रहा है। सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में नई श्वेत क्रांति आकार लेने लगी है। 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपए प्रति किलो की वृद्धि की है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। दुग्ध क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक पूर्णता स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा कांगड़ा दुग्ध संघ के 20,000 किलोलीटर क्षमता के 2 चिलिंग सेंटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: सुप्रसिद्ध श्रीखंड महादेव यात्रा इस वर्ष 10 से 23 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इसके अलावा सीमित संख्या में ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल्लू जिला उपायुक्त व श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष

0: अनुराग चंद्र शर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।

आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मों से। और आज के सुहाने सफर में विवेक शर्मा आपके साथ। पुराने गीत हिंदी सिनेमा के वे सुनहरे सदाबहार और क्लासिक गाने हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन जब इन्हें हम सुनते हैं तो पुरानी यादें, पुराना संगीत फिर से जीवंत हो उठता है। जी हाँ,

कार्यक्रम का पहला गीत आपकी नजर फिल्म है सगाई, आवाजें शमशाद बेगम, मोहम्मद रफी और साथियों की, बोल है राजेंद्र किशन के और संगीत सी रामचंद्र का।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से। जी, पुराने गीत पुराने दौर के सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों का एक प्रतीक है और पुरानी यादों की सुखद यात्रा में खो जाते हैं हम जब इन्हें सुनते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म दीदार का गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की, बोल हैं शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें एफएम शिमला के साथ।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
2: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री

0: ₹60 से बढ़ाकर ₹80 प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए ₹30 प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप ट्यून इन है 103.7 FM शिमला पर और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म है जाल, आवाजें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आज कार्यक्रम में इतना ही। तैयार हो जाइए हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। आइए सुनते हैं मीठे मीठे पहाड़ी लोकगीत।

0: पहाड़ी संगीत में भी आपने सुना कर्नेल राणा को। आप ट्यून इन हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बोलियों के लोकगीतों को आप सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं धर्मेंद्र शर्मा और कृष्णा ठाकुर की आवाज में ये लोकगीत।

पहाड़ी लोकगीतों की स्वर लहरियां गूंज रही हैं आपके रेडियो सेट पर एफएम शिमला के माध्यम से। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगली आवाज़, है हेतराम तनवर की।

सुहाना सफर चल रहा है 103.7 मेगाहर्ट्ज पर पहाड़ी संगीत का। जी हाँ, बने रहे हैं एफएम शिमला के साथ। आइए सुनते हैं मंजू भारद्वाज और सीमा भारद्वाज को।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। पहाड़ी संगीत में आज इतना ही। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार 12:12:05 पर, अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंच के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम

आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। समय हो गया है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है योद्धा, आवाज है विशाल मिश्रा की, बोल हैं कौशल किशोर और विशाल मिश्रा के, और संगीत विशाल मिश्रा का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

0: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं, फिल्म है बनवास। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रिया घोषाल और मिथुन की। बोल हैं सईद कादरी के और संगीत मिथुन का।

फिल्म संगीत में आज इतना ही। आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम एफ 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी सखी सहेलियों का स्वागत करते हैं। हाजिर हैं आपकी सखियां, मैं ब्रिजबाला
1: और मैं सपना शर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार। तो देखिए सपना, रोजाना की तरह आज भी हम अपनी बहनों के लिए ढेर सारी जानकारी और मनोरंजन लेकर प्रस्तुत हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं, और बहनों आज भी हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। आज की चर्चा खास रहने वाली है, साथ ही साथ योग से संबंधित भी हम आपसे बात करेंगे। और देखिए खाना खजाना में तो भाई हमारी बहनों के लिए बहुत कुछ खास रहता है ना?
0: बिल्कुल सपना, इंतज़ार भी करती हैं हमारी बहनें कि वीरवार के दिन हम बहनों के लिए व्यंजन विधियां लेकर आते हैं। तो बहनों आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप अभी से ठीक 1 बजे तक हमारे साथ बने रहना और साथ ही साथ अपना डायरी पेन जो है ज़रूर ले लेना।
1: बिल्कुल, वो तो निकालना ही पड़ेगा बहनों, क्योंकि देखिए रेसिपी जो आपको नोट करनी है ना
0: जी।
1: और इसके बाद हम अपनी बहनों के साथ साझा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के स्वर्णिम सफर को
0: जी। तो सपना, हमारे कार्यक्रम का आगाज तो हो ही चुका है
1: जी।
0: तो बहनों से अब बात करते हैं कि आज हम कौन

0: सा विषय उनसे लेकर आए हैं जिस पर हम उनसे चर्चा करेंगे जी। तो बहनों, आज कार्यक्रम में हम ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देने की क्षमता रखता है,
1: बिल्कुल
0: हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी हाँ, यानी कि बहनों, सोचना, सीखना और लिखना, इंसान की ना सबसे बड़ी ताकत बहनों उसकी सोच होती है
0: जी।
1: अब देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे काम और हमारा जो जीवन है ना वो भी बनता है।
0: बिल्कुल सही कहा सपना आपने। देखिए, अच्छी और सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
1: अब देखिए ना, सोचने के साथ साथ ना बहनों सीखना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और कहते भी है ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती
0: जी।
1: आप किसी भी उम्र के हो, आपका कुछ सीखने का मन है तो आप जरूर सीखें। और हम देखिए अपने माता पिता, शिक्षकों, पुस्तकों, प्रकृति और अपने अनुभवों से हर दिन कुछ ना कुछ देखिए सीखते रहते हैं, क्यों?
0: बिल्कुल सपना। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है ना
1: जी।
0: ये तो स्पष्ट सी बात है कि अगर हम जीवन में अपने सीखना बंद कर देंगे तो हमारी प्रगति कहीं ना कहीं जो है वो रुक जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा हमें जिज्ञासु बन के रहना है और नई नई बातें सीखने के लिए तैयार रहना, और नई नई बातें सीखने के लिए हमें शौक भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल, शौक होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ ना कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखते ही रहना है। और अब अगर हम बात करें लिखने की, तो लिखना देखिए सिर्फ लेखकों का काम नहीं है, हर व्यक्ति को लिखने की आदत डालनी है। जब हम अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं को लिखते हैं ना तो हमारी सोच और भी स्पष्ट हो जाती है, और साथ ही साथ विकसित भी होती है ना, नई नई जानकारी हमें मिलती है, कुछ ना कुछ हम लिखने से और भी ज़्यादा सीखते रहते हैं।
0: बिल्कुल सपना, लिखने से हमारी सोच तो अच्छी होती ही है, साथ ही लिखने से हमारी जो भाषा है वो भी बेहतर होती है और आत्मविश्वास भी साथ में बढ़ता है
1: जी।
0: आज के समय की अगर हम बात करें तो आज जो है मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी दिनचर्या का जो बड़ा हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया है, यानी कि हम ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। ऐसे में पढ़ने, सोचने और लिखने की आदत जो है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन अगर हर रोज़ कुछ समय अपने लिए निकालें, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, कुछ नया सीखें और दो चार पंक्तियाँ रोज़ लिखें तो ये छोटी सी आदत हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल।
0: और आपने देखा होगा कि जो आज हम सोशल मीडिया पे रहते हैं तो हम लिखना तो कहीं भूल ही गए हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और शायद हम याद करना भी भूल गए हैं
1: जी,
0: क्योंकि उसमें हम अपने जो पहले का जो समय था उसमें हम अपने नंबर भी याद रखते थे, हर एक चीज़ याद रखते थे, और जो लिखने की आदत थी वो डायरी में हम लिखते थे, लेकिन आज हम सब कुछ मोबाइल से करते हैं।
1: बिल्कुल, यानी वो लिखने की आदत ना कहीं खोती जा रही है
0: जी।
1: तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकाल कर कुछ ना कुछ लिखना है बहनों, है ना, ताकि आपकी जो मेमोरी है वो भी शार्प बने।
0: बिल्कुल सपना, अगर कोई भी आपके दिमाग में, कोई भी आपके जहन में कोई पंक्तियाँ आ रही हैं तो आप उसको कागज़ पे उतारें, कलम से लिखें, तो उससे क्या होगा, आपका जो मस्तिष्क है और भी ज्यादा उसका विकास होगा और लिखने की जो आदत है वो भी नहीं छूटेगी
1: जी। बिल्कुल, आप देखिए ना, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहा करते थे कि सीखने से रचनात्मकता आती है।
0: बिल्कुल,
1: है ना, रचनात्मकता से सोच पैदा होती है और सोच से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान जो है ना वो आपको महान बनाता है।
0: बिल्कुल सपना, ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान जो हमें मिलता है वही हमें महान बनाता है, और देखिए जो हमारे पास ज्ञान है ना वो अपने तक सीमित नहीं रखना है, वो हमें आगे भी बांटना है, यानी कि हमें दूसरों तक उस ज्ञान को पहुंचाना है, ताकि जो हमने अपने समय में चीज़ें सीखी हैं वो हम आगे वाली पीढ़ी को उसको देकर जाएं।
1: जी बिल्कुल, अब देखिए बात करें आत्मविकास की, तो देखिए आत्मविकास एक दिन में ही नहीं होता है
0: जी,
1: ये एक ऐसी यात्रा है जो जीवन भर चलती रहती है, इसलिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सोचें, कुछ ना कुछ नया सीखें और अपने विचार को लिखने की आदत जो है वो आपको बनानी है।
0: बिल्कुल सपना, ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि जो आत्मविकास है वो एक दिन में नहीं होता, वो बचपन से निरंतर चलता रहता है और जब तक कि हमारी यात्रा जो है समाप्त नहीं हो जाती
1: जी।
0: तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती सीखने की, हम कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। और हमें ऐसा भी नहीं सोचना है कि कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ जो है एक छोटे से बच्चे से भी सीख लेते हैं
1: जी,
0: एक छोटा सा बच्चा

0: भी हमें बहुत बड़ी बात सिखा जाता है। तो इसमें जो हमारा आत्मसम्मान है उसको हमने ये नहीं सोचना है कि हमारे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है, बल्कि हमें सीखना है
1: बिल्कुल,
0: और उसी चीज़ को हम फिर आगे भी सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि ये छोटा बच्चा है जिससे हम क्यों सीखें। तो ऐसी भावना आपको नहीं लानी है, जिससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ना बहनों, आप उससे ज़रूर सीखें।
0: बिल्कुल, और जिससे भी हम कुछ सीखते हैं वो हमारा गुरु बन जाता है, और गुरु कोई एक तो नहीं होता, जिससे भी हम कुछ भी सीखें तो वो प्रकृति भी हो सकती है, हमारे जीव जंतु भी हो सकते हैं, हमारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमें सीखना ज़रूर है।
1: जी बिल्कुल, तो अपनी बातों को थोड़ा सा हम विराम देते हैं।
0: जी बिल्कुल, और देखिए सपना, जो व्यक्ति सोचता है वो समझता भी है, और जो सीखता है उसे आगे भी बढ़ता है, और जो लिखता है वो अपने विचारों को अमर भी बना देता है।
1: जी बिल्कुल, तो अपनी बहनों को अब क्यों ना एक गीत सुनवा दिया जाए।
0: जी

0: देखिए प्रिजबाला, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों और अपनी मंजिल का तो देखिए खूब ध्यान रखते हैं
1: जी,
0: लेकिन क्या कभी अपने मन की आवाज़ भी हम सुनते हैं? मुझे लगता है कि शायद ही हम कभी सुन पाते होंगे, है ना?
1: बिल्कुल। सपना कब सुनते हैं हम, अपने लिए कब टाइम देते हैं? मुझे भी यही लगता है कि हम शायद अपने मन की कभी भी नहीं सुनते, क्योंकि आज
0: जी
1: की जो ज़िंदगी है वो उसमें बहुत सारी व्यस्तता है, चाहे वो काम का सिलसिला हो, चाहे घर का हो, घर परिवार का हो, बच्चों का हो, तो मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत व्यस्त ही रहते हैं, अपने
0: जी
1: लिए समय नहीं निकाल पाते।
0: और देखिए बहनों, कहते हैं कि जब मन शांत होता है तभी जीवन की हर राह आसान लगने लगती है,
1: जी
0: लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मन को शांत रखना देखिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में योग हमें सिखाता है कि कैसे हर पल को सजगता से जिया जाए और तनाव को पीछे छोड़कर संतुलित जीवन की ओर बढ़ा जाए।
1: बिल्कुल, आगे इसी विषय पर बात करेंगे सपना हम अपनी बहनों से, कि योग जो है सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम ही नहीं बल्कि मन को शांत और संतुलित रखने का भी एक प्रभावी उपाय है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जब हम योग करते हैं ना तो हमारा ध्यान अपनी सांसों, शरीर और देखिए मन पर केंद्रित होता है। इससे मन भटकता नहीं बल्कि शांत और स्थिर होने लगता है। योगासन, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास बहनों तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में मदद करता है।
1: यानी सपना आप यही कहना चाह रही हैं बहनों से कि योग जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसे हमें अपने डेली यानी कि जो रोज़मर्रा की जो दिन जो हमारी शैली है रोज़ की
0: जी,
1: उसमें उसे हमें योग को शामिल करना है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह के कुछ मिनटों का योग पूरे दिन को जो है सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर में योग को स्वस्थ जीवन शैली का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो माना जा रहा है।
0: जी हाँ, और बहनों याद रखिए कि शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है और योग उस शक्ति तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है।
1: बिल्कुल, तो आज से ही बहनों आप अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट योग, गहरी सांस और सकारात्मक सोच के साथ करें। जब मन शांत होगा तब हर चुनौती आसान लगेगी और जीवन जो है ज़्यादा संतुलित और आनंदमय बन जाएगा।
0: जी
1: तो सुबह सबसे पहले उठकर हमारी बहनें पानी पीती हैं, उसके बाद अगर वो योग को थोड़ा सा समय दे यानी कि 15 मिनट भी अगर वो अपने आप को देती हैं, तो यकीन मानिए बहनों आप स्वस्थ रहेंगी, आपका जो मस्तिष्क है वो भी तरोताज़ा रहेगा और जो आपका सारा दिन है वो एकदम ऊर्जावान बनकर रह जाएगा।
0: बिल्कुल, यानी थोड़ा सा समय निकालकर आप योगासन, प्राणायाम कर सकती हैं, है ना? और जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसें संतुलित होती हैं, है ना? जब हमारी सांसें संतुलित होगी विचार भी संतुलित हो जाएंगे और जब विचार संतुलित होते हैं तो देखिए जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है।
1: जी, और स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर हमें भी कदम बढ़ाना है, तो इसलिए बहनों आप सुबह सुबह सैर को भी जा सकती हैं और योगा भी कर सकते हैं। और नियमित योग हमें तन से चुस्त, मन से शांत और जीवन से सकारात्मक बनाए रखता है।
0: बिल्कुल, और देखिए इस योग में ना है इस में जो है आप अपने घर परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर सकती हैं। अपने बच्चों को आप शामिल कर सकती हैं, बड़े बुजुर्गों को आप शामिल कर सकती हैं, उन्हें सैर पर ले जा सकती हैं, घर पर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जो है उनके साथ कुछ एक योगासन, प्राणायाम आप कर सकती हैं ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल सपना, और योग तो सभी के लिए ज़रूरी है और सभी को स्वस्थ रखने के लिए काम भी आता है ना?

0: उसमें चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जो भी हो, ये सबके लिए सही रहता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर आप योग को अपनाते हैं तो आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए ब्रिजवाला, हर कोई चाहता है कि हम स्वस्थ रहें, फिट रहें, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस थोड़ा सा समय निकालना होगा और उस समय में योगासन जरूर करें।
0: जी, तो अब
1: अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दें।
0: जी।

0: बताते ना, वो हमारी आंखें बयां कर देती है।
1: बिल्कुल सही कहा सपना आपने, जो आंखें होती है वो हमारे दिल की जुबान को प्रकट करती है।
0: जी,
1: जो बातें हम दिल से या मतलब अपनी जुबान से नहीं कह सकते वो हम अपनी आंखों से कह सकते हैं
0: जी।
1: और सामने वाला समझ भी जाता है। तो आंखों की भाषा समझना सीखिए बहनों, है ना
0: जी।
1: तो बहनों अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि हमने शुरू में ही आपसे कहा था कि हम आपके लिए एक व्यंजन विधि लेकर आए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप अपना डायरी पेन लेकर तैयार होंगी। और आज हम आपको क्या बताने वाले हैं वो उसका जो टॉपिक है, यानी कि जो हम आपके लिए व्यंजन विधि लेकर आए हैं वो है लौकी का मुठिया
0: जी।
1: अब आपको कैसे बनाना है उसके लिए आप को थोड़ा सा रुकना है, उसकी सामग्री भी बताएंगे और विधि भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे थोड़े से लौकी के फायदे साझा करना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत से लौकी के फायदे हैं, तो ये बताना तो अपनी बहनों को बनता ही है कि क्या क्या फायदे हैं इसके। अक्सर बहनों कहा जाता है कि अच्छी सेहत की शुरुआत ना हमारी थाली से होती है, और जब हमारी थाली पौष्टिक और संतुलित हो तो भाई शरीर भी स्वस्थ रहता है और साथ ही साथ मन भी हमारा प्रसन्न रहता है।
1: बिल्कुल, ये तो हमेशा कहते ही है सपना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन
0: जी।
1: तो हमारी थाली जितनी रंग बिरंगी और पौष्टिक होगी हमारा स्वास्थ्य भी उतना ही बेहतर होगा और हम सेहतमंद भी रहेंगे। और अगर सपना हमें किसी के दिल पर भी राज करना है तो उस रास्ता कहते पेट से होकर जाता है ना
0: जी।
1: तो अगर हमारा खाना स्वादिष्ट और पौष्टिक होगा तो हम दूसरों का दिल भी जीत पाएंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी रहेंगे।
0: बिल्कुल ब्रिजबाला, आप देखिए आपने बात की सेहतमंद रहने की, तो देखिए ना अच्छी सेहत का जो है ना कोई संयोग नहीं होता, बल्कि रोज़ की सही खान पान की आदतों का ये परिणाम होता है। और जब बात पौष्टिक भोजन की हो तो हरी सब्जियों का जिक्र होना देखिए स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल, तो आज हम बात करेंगे गुणों से भरपूर लौकी की, जो स्वाद के साथ साथ सेहत का भी बेहतरीन खजाना है। इसमें लगभग 90-95% जो है पानी होता है, इसलिए ये शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: ये कम कैलोरी वाली सब्जी है, और अगर हमें अपने वजन को नियंत्रित रखना है तो लौकी को हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना होगा।
0: जी हाँ, लौकी में विटामिन सी बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
1: जी, फाइबर युक्त होने के कारण जो पाचन तंत्र है उसको भी स्वस्थ रखता है, उसमें भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। हल्की और आसानी से पचने वाली जो कारण होते हैं उसके, और सभी उम्र के लोगों जो लोग हैं इसे खा सकते हैं। और जैसे बच्चों को पसंद नहीं होता तो आप लौकी को जो है किसी भी दूसरी मतलब अलग अलग तरीके से बना करके उन्हें परोस सकती हैं। तो अगर बात करें इससे बनने वाली रेसिपी की, तो इससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं। लौकी की सब्जी है, लौकी की चना दाल, कोफ्ते, रायता, सूप, जूस, हलवा, खीर, भरवा लौकी, लौकी के परांठे, चीला, लौकी की टिक्की, लौकी का थेपला, लौकी का मुठिया, ये बहनों गुजराती व्यंजन है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सी रेसिपी ब्रिजबाला आपने हमारी बहनों को बता दी कि ये जो रेसिपी है ना वो लौकी से बनाई जाती है ना, तो मुझे लगता है कि अब अपनी बहनों

0: को क्यों ना उनका इंतजार खत्म किए देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लौकी का मुठिया कैसे बना सकती हैं, है ना।
1: इसके लिए बहनों आपको सबसे पहले सामग्री क्या चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 2 कप कद्दूकस की हुई लौकी, 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप बेसन, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी,
0: 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार आपको लेना है, हरा धनिया आपको लेना है कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच तेल, और तड़के के लिए भी आपको सामग्री जो चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। राई 1 छोटा चम्मच आपको लेना है, तिल 1 बड़ा चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 आपको लेने हैं, साथ ही साथ हरी मिर्च 2 बारीक कटी हुई, हींग 1 चुटकी आपको लेनी है।
1: तो सपना आप बनाने की विधि भी बहनों को बता दें।
0: जी,
1: लौकी को बहनों आपने सबसे पहले कद्दूकस करना है और उसे हल्का सा निचोड़ लेना है। इसमें सभी सामग्री आपको जो मिक्स कर लेनी है, सिवाय इसके जो हमने आपको तड़के के लिए बताई थी उससे छोड़कर सभी मिक्स आपने कर लेना है और नरम आटा भी गूंथ लेना है। और ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि लौकी में अपना पानी होता है बहनों। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इस मिश्रण को आपने बेलना है और मोटे रोल इसके आपने बना लेने हैं।
0: बिल्कुल, अब स्टीमर में पानी गर्म आपको करना है और स्टीमर की प्लेट पर आपको थोड़ा सा तेल लगाकर मुठिया के जो रोल आपने बनाए हैं ना उसको उस पर रख देना है
1: जी।
0: और 20 से 25 मिनट तक इसे भाप में पकने देना है। अब आप चाकू या फॉक को मुठिया में डालकर देखें, अगर वो साफ बाहर आता है तो भाई आपकी मुठिया जो है ना वो पक कर तैयार है।
1: बिल्कुल, और इसे बाहर निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने देना है। 1/2 इंच के गोल टुकड़े आपको काट लेने हैं। अब आपको इसमें तड़का लगाना है।
0: जी हाँ, आपको क्या करना है, 1 कढ़ाही में 2 चम्मच तेल गरम करने हैं। तेल गरम होने पर राई और हींग आपको डालना है, इसके बाद कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और तिल डालकर कुछ सेकंड के लिए आपको इसे भून लेना है।
1: जी, अब कढ़ाही में कटे हुए मुठिया को डालना है और 4 से 5 मिनट तक भूनें ताकि वो बाहर से हल्के सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं। तो लीजिए बहनों, तैयार है गर्मा गर्म लौकी मुठिया। इसे चाय या हरी चटनी के साथ भी आप परोस सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो देखिए सपना, यहाँ एक बात यह है कि बच्चों को जो है लौकी की सब्जी अगर हर रोज़ बनाते हैं तो वो पसंद नहीं आती।
0: जी,
1: तो इस तरह से अगर आप अलग अलग व्यंजन या दूसरे राज्य की जैसे हम चीज़ें अलग तरीके से बनाते हैं अगर वो खिलाएं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बुजुर्गों को भी, यानी सभी को चेंज अच्छा लगता है ना,
0: जी,
1: बदलाव अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, तो क्यों ना अब अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दिया जाए।
1: बिल्कुल,

0: तरीके से बनाते हैं, अगर वो खिलाएं तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बुजुर्गों को भी, यानी सभी को चेंज अच्छा लगता है, है ना, बदलाव अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, तो क्यों ना अब अपनी बहनों को एक गीत सुनवा दिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: कलाकारों, तकनीशियनों, लेखकों और श्रोताओं को भी समर्पित है जिन्होंने आकाशवाणी को देश की पहचान बनाया है।
1: बिल्कुल, तो आपको भी बने रहना है आकाशवाणी के साथ, सुनते रहना है अपने पसंदीदा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रिक्वेंसी पर।

0: देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी
1: देखिए ब्रिजवाला, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। इसी वादे के साथ कि अपनी बहनों से फिर होगी मुलाकात, दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम महिला सम्मेलन। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाला है समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में, 1:05 पर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंधगोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपरे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: हर खुशी अब लगे नमी,
0: मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर विवेक शर्मा के साथ। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है तन्नु वेड्स मन्नु, आवाज है रूप कुमार राठौर की, बोल हैं राजशेखर के और संगीत दिया है कृष्णा ने। सुनते रहे, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 FM शिमला के साथ।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको देना चाहेंगे। शुक्रवार यानी 19 जून प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है योग और स्वास्थ्य। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 19 जून प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपकी नजर फिल्म है द गर्लफ्रेंड। आवाजें हैं हिशमा अब्दुल की और बोल हैं गर्मा ओब्राह के और संगीत हिशम अब्दुल का।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और मीठे मीठे गीतों का मिलन है आपके साथ। आइए सुनते हैं द डर्टी पिक्चर का ये गीत। आवाज है कमाल खान की, बोल रजत अरोड़ा के और संगीत विशाल और शेखर का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें FM शिमला के साथ।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको देना चाहेंगे लोकवाणी के विषय में। शुक्रवार यानी 19 जून 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है योग और स्वास्थ्य। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 19 जून प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत आपकी नज़र फिल्म है सन ऑफ सरदार। आवाजें हैं रोमी सुधीर यदुवंशी और सुकृति भारद्वाज की। बोल हैं शबीर अहमद और सुकृति भारद्वाज के और संगीत हर्ष उपाध्याय और हिमेश रेशमिया का। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 एफएम शिमला के संग।

आप हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ और एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत। और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है मौसम, आवाज़ें मिक्का सिंह और पंकज कुमार की है, बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत प्रीतम का।

0: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
6: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
5: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
6: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
5: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
6: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
4: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत FM शिमला पर। आइए सुनते हैं, फिल्म है मेट्रो इन दिनों, आवाज है अरिजीत सिंह की, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर फिल्म संगीत। अगला गीत आपकी नजर फिल्म है हाउसफुल 5। आवाजें हैं मधुबंती और सुमंतो मुखर्जी की, कुमार के बोल हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ। नेक्स्ट सॉन्ग आपके लिए फिल्म है फतेह। आवाजें हैं विशाल मिश्रा और असीस कौर की, बोल हैं शबीर अहमद और अजयपाल शर्मा के, और संगीत शबीर अहमद का।

आप सुन रहे हैं FM शिमला और फिल्म संगीत में कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपको सुना रहे हैं। फिल्म है रेडियो, आवाजें हैं हिमेश रेशमिया की, बोल हैं सुब्रत सिन्हा के और संगीत हिमेश रेशमिया का। आप सुन रहे हैं 103.7 FM शिमला। जी हाँ, यह है मन का रेडियो, हमेशा बसता रहना चाहिए आपके दिल में।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत 103.7 एफएम शिमला पर।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। आइए सुनते हैं सबरंग। सबरंग कई रंगों का मिलन है, गजल जो छेड़ी तो महफिल में रंग भराया, कवाली गूंजी तो दिल का मलाल मिटता नजर आया।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सबरंग। अभी आपने सुनी गजल, आवाज़ थी चंदन दास की। आइए अब सुनते हैं सूफी कलाम, आवाज़ है कैलाश खेर की।

सबरंग में आज इतना ही। आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए सुनिए दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा

0: ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक

0: बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती

जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं शिखरों के स्वर, लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर। अभी आपने सुना दिग्विजय सिंह, दयानंद शर्मा, बाबूराम और अभिषेक वर्मा को। कार्यक्रम संबंधी सूचना देना चाहेंगे लोकवाणी के विषय में। शुक्रवार यानी 19 जून 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है योग और स्वास्थ्य। श्रोताओ, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 19 जून प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

पहाड़ी लोकगीतों का सफर चल रहा है एफएम शिमला में, एफएम शिमला पर शिखरों के स्वर में। आइए सुनते हैं पहाड़ी सहगान।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं शिखरों के स्वर कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति शकुंतला शर्मन और साथियों की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे शिखरों के स्वर 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। योजना के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए नई दिल्ली में श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि पिछले साल अगस्त से PMVBRY के अंतर्गत 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांगड़ा को प्रदेश पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज धर्मशाला में 15,28,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहाँ विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना को

0: कुछ योजनाएं लाई है, कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया हमने परिवार विस्थापित हुए है उपलब्ध करवाया है, अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा। दूसरा था कि हेलीपोर्ट्स बनाया जाए, तीसरा ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में हम बनाने जा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था,
1: कर पोस्टमार्टम के लिए चंबा के सरकारी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को

0: ने दिया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो 2010 से पहले के लगे हुए टीचर जिनका सेवा काल 20, 25, 30 वर्ष तक हो चुका है, उनके लिए संभव नहीं है इस समय में इस तरह की परीक्षा देना।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। प्रीजी प्रस्तुत है किन्नौर जिले की चिट्ठी। इसके लेखक हैं सुमेश कुमारी, वाचक स्वर राकेश शर्मा का है।
1: जनजातीय जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिला परिषद सदस्यों, बीडीसी सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों ने पद व गोपनीयता की शपथ लेकर ग्रामीण विकास और जनसेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। रिकांगपियो में आयोजित समारोह में उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने जिला परिषद के सभी 10 नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही जिला परिषद अध्यक्ष और उपायुक्त के उपाध्यक्ष के चुनाव कर जिला परिषद का विधिवत गठन किया जाएगा। वहीं बचत भवन रिकांगपियो में आयोजित समारोह में राजस्व, बागवानी, जनजाति विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने नव निर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों को शपथ दिलाई। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधान और उपप्रधान ग्रामीण लोकतंत्र की मजबूती कड़ी है और उन्हें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम करना चाहिए। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया गया, जिससे गांव में लोकतंत्र और विकास को नई दिशा मिली। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को आरक्षण मिलने से स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ी है और समावेशी विकास को बल मिला है। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ अब जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। भगवान शिव के पवित्र धाम किन्नौर कैलाश की यात्रा इस वर्ष 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक आयोजित की जाएगी। समुद्र तल से लगभग 6,050 मीटर यानी 19,850 फीट की ऊंचाई पर स्थित किन्नौर कैलाश शिवलिंग देश के प्रमुख धार्मिक और साहसिक तीर्थ स्थलों में से एक है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अधिकतम 375 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। भारत चीन शिपकिला बॉर्डर ट्रेड से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को व्यापारिक बारीकियों से अवगत कराने और उनके व्यवसाय को गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से गत दिनों पूह में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त डॉ. अमित कुमार ने कहा कि इस शिविर में 58 ट्रेड व्यापारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इंडो चाइना बॉर्डर ट्रेड के लिए 58 ट्रेडर्स से एप्लीकेशन आ चुकी हैं, जो कि सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए भेजी गई हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पास इशू के दिए जाएंगे। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने विभिन्न विभागों को संभावित आपदा परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग को निगुलसरी सहित संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी, श्रमिकों और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं जल शक्ति विभाग को पेयजल टैंकों की सफाई, क्लोरिनेशन और पानी की नियमित जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त राशन भंडारण और पेट्रोल डीजल की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा SDRF, NDRF, ITBP, पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा है कि मॉनसून के दौरान किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और सभी विभागों को सतर्क रहकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला किन्नौर के दूरदराज क्षेत्र रूपी में बीते सोमवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली और करीब सुबह 7 बजे से 8 बजे तक लगातार 1 घंटे तक हुई तेज ओलावृष्टि ने किसानों और बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। क्षेत्र में 3 से 4 इंच तक ओलावृष्टि दर्ज होने की जानकारी सामने आई है, जिससे सेब, चुल्ली, खुमानी, आलू और पलम सहित अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार ओलावृष्टि इतनी तीव्र थी कि खेतों और बागीचों में सफ़ेद चादर बिछ गई।

0: स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह फसल क्षति होने की स्थिति में एक बीघा भूमि पर मिलने वाला मुआवजा लगभग 600 से 700 रुपये तक आंका जाता है, जो वास्तविक नुकसान की तुलना में बेहद कम है। किसानों और बागवानों ने सरकार से विशेष राहत पैकेज और फसल नुकसान का वास्तविक मूल्यांकन करने की मांग की है। इसके साथ ही जिला की चिट्ठी संपन्न हुई। नमस्कार।
1: कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: FM

आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला और समय हो गया है प्रोग्राम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। जी, पुराने गीतों को सुनने का आनंद ही कुछ और है। पुराने गीत केवल गाने नहीं हैं बल्कि एक युग की यादें हैं जो तेज दौड़ भाग वाली जिंदगी में हमें सुकून पहुंचाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है श्री 420, आवाजें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत शंकर जय किशन का।

आप सुन रहे हैं FM शिमला। कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको देना चाहेंगे। लोकवाणी के विषय में शुक्रवार यानी 19 जून 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है योग और स्वास्थ्य। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच हमारे फोन नंबर 2808034 और 2808152 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म है मुनीम जी, आवाज किशोर कुमार की है, साहिर के बोल और एसटी बर्मन का संगीत। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के संग।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा ठाकुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ में कहीं पीछे छूटता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंप्लिसिटी की, यानी सादगी की, खूबसूरती की। आज का दौर दिखावे, प्रतियोगिता और तेज़ रफ्तार का दौर है। हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है, सबसे महंगी चीज़ें पाना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी कहाँ छिपी होती है? अक्सर वो खुशी छोटी छोटी साधारण और सादगी भरी बातों में मिलती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

दोस्तों, सादगी का मतलब केवल साधारण कपड़े पहनना या कम खर्च करना नहीं है। सादगी एक सोच है, एक जीवन शैली है। जब हम अपने जीवन को अनावश्यक इच्छाओं और दिखावे से दूर रखते हैं, तब मन अधिक शांत और संतुष्ट रहता है। महात्मा गांधी ने कहा था, सादा जीवन उच्च विचार। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सोचिए, बचपन में हमें छोटी छोटी चीज़ों से कितनी खुशी मिलती थी। दोस्तों के साथ खेलना, बारिश में भीगना, परिवार के साथ समय बिताना, तब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन खुशियाँ भरपूर थी। आज सुविधाएँ बढ़ गई हैं, लेकिन संतोष कम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सादगी हमें फिर से उन्हें असली खुशियों से जोड़ती है। आइए इसे

दोस्तों, सोशल मीडिया के इस युग में हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी खुशियों की तुलना करने लगते हैं। किसी के पास बेहतर फ़ोन है, किसी के पास बेहतर नौकरी, तो किसी के पास ज़्यादा पैसे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती है। जब हम अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और अपनी उपलब्धियों की कद्र करते हैं, तब जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। सादगी हमें ये सिखाती है कि जो हमारे पास है उसकी कृतज्ञता महसूस करें। एक साधारण मुस्कान, किसी की मदद करना, माता पिता के साथ कुछ पल बिताना, ये ऐसी खुशियां हैं जिन्हें कोई पैसा खरीद नहीं सकता। तो अब सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज के युवाणी कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सादगी की। दोस्तों, प्रकृति हमें हर दिन सादगी का पाठ पढ़ाती है। सूरज बिना किसी दिखावे के रोज उगता है, फूल अपनी खुशबू बिना किसी शोर के फैलाते हैं, नदी लगातार बहती रहती है बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा किए। प्रकृति का हर तत्व हमें सिखाता है कि सुंदरता सादगी

दोस्तों, सादगी केवल हमारे जीवन को आसान नहीं बनाती, बल्कि हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। जब भी हम लोगों को उनके व्यक्तित्व से पहचानते हैं, ना कि उनके पहनावे या आर्थिक स्थिति से, तभी रिश्तों में सच्चाई और अपनापन आता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए सादगी का अर्थ पीछे रह जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपनी पहचान बनाए रखना, अपने मूल्यों को ना भूलना और जीवन में संतुलन बनाए रखना। आधुनिक बनिए, सफल बनिए, लेकिन अपने भीतर की सरलता को कभी मत खोइए, क्योंकि सादगी ही वो गुण है जो व्यक्ति को अंदर से खूबसूरत बनाती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सफल बनिए, लेकिन अपने भीतर की सरलता को कभी मत खोइए, क्योंकि सादगी ही वो गुण है जो व्यक्ति को अंदर से खूबसूरत बनाती है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सादगी कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सादगी से जीना सीख लेता है, वो छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना भी सीख जाता है। याद रखिए, खुशियां बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों को महसूस करने में छिपी होती है। इसी संदेश के साथ मैं नेहा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे युवाणी के एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। नमस्कार।

0: उठाए, बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं, जो फाइटर पायलट बचे थे उनके
1: जी।
0: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोर्समेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
1: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूँगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और उनकी से बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियाँ हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब की स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। ख़ासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर मुझे, पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज़ पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है, मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे, और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा, और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने एनडीए का, और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया है।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का जो सफ़र है, सफ़र नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा, जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज़ ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज़ द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपनी

0: रिटायरमेंट के बाद मान रखा है, और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी। हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।
1: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो हैं लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है, और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
0: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूँ मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीज़ें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया, और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे

0: ट्रॉफी जीती, और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे उससे मेरे को ज़िंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
1: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक ज़रूर पहुँचाया जाए, और आगे का कारवां आप ही की ज़ुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई ऐसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 1997 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून, दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी। पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो हमको बचपन से ही सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोर्समेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में, अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोर्समेट मनोज पांडे। तो कई कोर्समेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी। और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया, लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोर्समेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था, जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास लाके खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास लाके खड़ा कर दिया। और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं। तो हमारे कोर्स ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई। हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोर्स 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर लेता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन, तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूँ, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं। और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
0: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये एक व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है?
1: बहुत बहुत महत्वपूर्ण। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूँगा, इंडिविजुअल

संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें

0: लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे है, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी है, करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं, वो क्या क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता? पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये भय, डर, खौफ काफ़ी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूँ, चाहे जो भी हूँ, उस कमांड को सक्सेस करना है मैं। और अगर सक्सेस नहीं हुआ, तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो चाहे मेरी जान जाए, लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूँगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सकें।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस हैं, एस्प्री डी कोर है भारतीय सेना का, जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कुछ जो जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज़ होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे, उसमें काफ़ी फ़र्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है, तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूँ, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है, लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह, क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नय्यर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीज़ों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं। जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर राणा है, उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रही हैं, तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तनवर

यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से और उन्हीं के नाम, ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की, आपके मिशंस के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए कर्नल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले

0: पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी। तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए? बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो। और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माई वाइफ वॉज इन सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
1: सो स्वीट।
0: एंड तो पहली बार मेरे को काफ़ी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अफसर था। वो शी वॉज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
1: अच्छा।
0: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक साल बाद हमारी इंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊँगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। माय वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी। तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स ऑल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूँ। हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता। तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में। पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफ़ी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
1: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, तमाम ऑफिसर्स की है, जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन में काफ़ी कारगर साबित होती हैं,
0: बिल्कुल
1: नित्य प्रति कार्य करती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को, जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रहती है। और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
0: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
1: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
0: बहुत याद आता है। ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
1: क्या बात है।
0: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए, मेरे को अभी तक मेरी आंखों के सामने वो नजर आना आ
1: जाता है। यानी कि वो पल जिसमें उन्होंने डांस किया और उनका नृत्य कहीं ना कहीं आपको लुभा गया। वाह क्या बात है। कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं, और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहाँ पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहाँ से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफ कोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और उसमें। और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को भी कहता हूँ। मेरा बेटा अभी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूँ कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत, जितनी शोहरत, जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं भी नहीं मिल सकता।
0: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे।

0: बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
0: जी।
1: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूँगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
0: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
1: आज के युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
0: जी।
1: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहाँ पे हर चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूँ कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
0: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुँचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी ज़िंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुँचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफ़ी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम ज़रूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आइए सुनते हैं मंडियाली गीत। अक्षर सिंह परमार और शांति बिष्ट की आवाजों में आपको सुना रहे हैं ये गीत।

मंडियाली गीत में आइए सुनते हैं माधुरी शर्मा और लहरू राम सांख्यान की आवाज़ों में ये लोकगीत।

हम लोग आकाशवाणी शिमला के मुंड बेल दी 5:47 भुंगे रस्ते गिन कई रातु अपू मन पसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुने जी। पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुनने वाले सभी जनों महेंद्र कुमारी तरफा बेल दी नमस्ते।

जी तो सुन बाड़ियो हाजिर अखबार फिर त्यों अपू मनपसंद पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम जिन करियो महेंद्र कुमार ता से ब्याह क्या पहले तो जतरे भी ब्याह पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम सुन लगो रिश्ते से आकाशवाणी शिमले पुट सुन गुरे एफ एम शिमले पुट सुन गुरे तेने से ब्याह के जैसे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर स्वागत करता सुन बाड़ियो पाँच बज कर भी है मंठे पुथा जैसे हैं पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम जैसे शुरू होता तो पाँच बज कर पंजाब मंठे कर जैसे हैं सुन बाड़िया सुनी सकते दो नए दिहाड़ी गल करूँ तो समारे जैसे हैं पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम इता बसते इता तो ठा शांचरे इता टेमी गल करूँ तो बिल दी पाँच बज करी बीहे मंठे क्या पाँच बज करी पंजाब मंठे कर तीह मंठे ना आधा घंटा जैसे पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम है सुनने वाले सुनते अस आपू पंगवाड़ी बोली कार्यक्रम अंतर कुछ सरकारी स्कीमें बीती है ना जे मैणुआ दी फेदे बैड़ी बीती भलियाए बाड़ी तनी बारे जैसे डकबोकला जानकारी देते है ना कि मैं जैसे तेने स्कीमें के फेदे ने फिर जे पैंगे घाटी जे जरूरी कोई खास चीज़ हुई तनी बारे विजय से डक वो खिलाते देशे प्रदेशे खबरें विजय से आपू सुनने वाले सुनाते गीती की गल करें तो बधिया बधिया गीत जैसे ताड़ी थीर बुते तन भी आपू सुनने वाले सुनाते तो आज मूँ डक वो खिलाने इसकी सख्त सुकन्या समृद्धि योजना है ना तसे बारे जैसे डक वो खिलाने इसकी होरी लाने इसकी काला जीरा तथा जे राजमा है जे जनजातीय इलाके अंतर जैसे तैयार होता तसे बारे से ब्याह क्या पहले मैं आख जैसे बधिया जन गीत तैयार थे उस तू गीत सुनाता हूँ तुम्हें फिर लाता तुम्हें जे डकबोकता सुने जी गीत

जी अत्रु बरेजन गीत से सह शून्य बाण सुनु जुग जी धारा रे गुजरु गीत्यार थे हुकुम शर्मा अब जे मुझे डकबोख लानिस्ती जानकारी देने अपू शून्य बाणिया देनेस्ती सस्ती सुकन्या समृद्धि स्कीमी बारे है ना। जैसा हम अंग्रेजी गल करें तो एस एस वाई बोते खास करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ना जे जोड़ी करी भारत सरकार आखा होरी जैसे बचत करने स्कीम जैसे चलाओ रिस्ती जे है ना मठली जिखे जमन क्या पत्या दस साल तकर जे कोई भूती है ना टब्बर अंतर तेने नौ पुट जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीमी तेहते अंतर जैसे जे तेने इजीबा भूते बुढ़ौड़ भूते है ना से जैसे खाता खोल सकते ता कसे भी नीड है ना डाकखाने घाय करी जैसे एस सुकन्या समृद्धि स्कीम अंतर खाता खोल सकते या तने नीड जे सरकार एक नारा बैंक जैसे जने है ना ने बैंक भी बतौर भूतु कि तने स्की है ना बैंक अंतर भी स्कीम जैसे सरकार चला रुपते कि बैंक अंतर भी मैन खाते खोल सकते ता जैस भी लग तू कि अरे मुँह है ना पत्यां पत्यां कोई मोटी भूती है ना तसे अगर खारी से पढ़ान हस्ती खारी से लखान हस्ती ता जैसे पुगत हस्ती

पुगती है साहब, जैसे जरूर जैसे तने नौ फुट खाता खोल कर जैसे बचत जरूर करनी चाहिए। किसकी पते कोई मोटी बती तस अगर खारे पढ़ान लिखान स्थित तखें भी जैसे खर्चा लगता लगता है ना रुपये लगते लगते तो कुड़ी न कुड़ी अगर जे भी मैं जैसे अपू टब्बर अंतर दुई कोई है ना कि भाई दो कोई स्थित तने नौ फुट जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम अंतर जैसे खाता खोल सकते तो तने नौ फुट जैसे रुपये जमा कर सकते। अगर कहीं ऐस कहीं खाता खोल छड़ा तो ऐस पुट जैसे सरकारी तरफ कोई भी जैसे बोतुन उनकी दवाई जैसे अगर दस फुट हम लड़ खारे रुपये जमा होंगे तो दस फुट कोई भी जैसे ब्याज नहीं लगनू कर मुक्त है ना बना दस फुट जैसे कोई भी ब्याज मतलब कर मुक्त जैसे आती नस्ते ठीक। खात्या अंतर जैसे खास कर मैं बोलूँ कि टब्बर अंतर दो कोई है ना तहने नौ फुट भी हैं कि नौ फुट से जे खाता तुम चला सकते कतरी जैसे तुम पुगत हस्ती कतरी तुम जैसे मैंने आपको बचत कर सकते है ना हज़ार रुपये पाँच सौ रुपये दो हज़ार रुपये जितने भी तुम्हें लगते कि यार दो कोई है ना दो कोई हस्ती मान दो यहाँ कोई कहना है ना कि यहाँ टब्बर अंतर भी कोई बुती तो तहने आपको पुगती हिसाब एक दोनों इतने कर सकता ता तैसे हिसाब से दस साल तक है ना कोई उम्र दस साल बोल ता तक भी जैसे कसे लगतू कि राहू खाता खोलना चाहता दस साल तक उम्र जैस कोई बोरे बोल से जैसे खाता खोले सकते तस क्या पत्या जैसे ना खोले सकते। घट से घट ऐसा अंतर जे रुपये जमा करवाने से मतलब कि भाई महीने कतरे देने जैसे अढ़ाई सौ रुपये है ना घट से घट अढ़ाई सौ क्या जैसे खाड़ी महीने जमा कर सकते। अगर तैसे आपू बचती हिसाब है अपू पुगती हिसाब में बोलो कि कहीं पाँच सौ भी कर सकता मैंने कि कोई खाते ना कहीं हज़ार भी कर सकता जत्री तसे पुगत हस्ती तस जैसे कर सकते। खास कर ऐसा अंतर है ना अनु बताते कि खाता खोल छड़ा तो तस क्या पत्या जिस तारीख पुत खाता खुल गया भाई बोलने गल है कि सुकन्या समृद्धि स्कीम ही ते कसरी नौ पुठ कसरी बुलाने खाता खोल छड़ा तो तस तरीक क्या पत्या पंद्रह साल तक जैसे तसे जे बुलाओ रस्ते जने खाता खोलाओ रस्ता जे टब रस्ते जी बाबू ते तहने जैसे पंद्रह साल तक तस अंतर जैसे हर साल जैसे रुपये जमा करने वस्ते जिखें से परिपक्व होंगे ते में चोटी जैसा संबते तखें कि बोतो कि सुकन्या समृद्धि स्कीम अंतर खाता खोलने क्या पत्या इक्की साल पूरे भून पुट है ना तखें जैसे तस अंतरा कुछ रुपये भी जैसे घाल सकते हैं ना। खास कर मैं बोलूँ कि ऐ तिखें बुत जिखें कोई है ना दसवें तकर पढ़ गई बुद्धि तस्कियाँ अगर बारहवीं है ना ग्यारहवीं बारहवीं करनी चाहती से कोई ट्रेंगले वगैरह करनी चाहती है ना कई भी जे कसे भी है ना कुछ भी से कई मैं बोलूँ कि इतने सारे का डॉक्टर बनना चाहती है ना कई भी क्योंकि दसवें क्या बारहवें क्या बाद अगर जे पढ़ाई बुद्धि है ना तस अंतर जैसे खर्चा थोड़ा बद गया किसकी अगर कसे अब डॉक्टर बने तो तस्से साइंस वाली किताब पढ़नेसती है ना तेनी भी जैसे थोड़ी से भी महंगी बुती कसे इंजीनियर बनस्तु तेनी भी जैसे महंगी बुती अगर जत्र भी जे थोड़ी पढ़ाई बुती तसे जैसे खर्चा बात रहता तो तहने अगर जने बुढ़ाया जने जो बाबे जैसे आपू कोई के नव अंतर खाते खोल सौरे तो तस क्या पत्या से थोड़े थोड़े रुपया पूजे रुती हिसाब जैसे काट सकते। तो अजे भी जे स्कीम होती है ना ऐसे आखता बते काट के खेल सकते पे कि खेई पुत्र है ना जे खाते खोल छड़े बुलाने कोई के नौ अगर तस कोई उम्र अठारह साल भूं लटी गेरी है ना इन्होंने क्या होता सतारे रिस्ती छोड़े रिस्ती तिखे नहीं कह रही अठारह साल से प्यूरी लटी गेरी तस क्या खाल दी तस उम्र तिखे जैसे थोड़े थोड़े घाल सकते साते है ना तसे जैसे कि भूतू की जमा के रही राशि बोल जिखे अठारह साल से कोई प्यूरी गई तस क्या पत्या जैसे फिफ्टी परसेंट मतलब आधे जैसे आपू जैसे काट कर सकते कुड़ी जैसे तने लाई सकते। हूँ तो जैसे इठा आइए बोलना चाहता कि हर एक मैनू जे खास कर मैं बोलूँ कि पत्या पेल तो नेड़े स्कूल बुते हैं ना दसवें तकर अब तो बारहवें तकर भी नेड़े तस क्या पत्या अगर थोड़े दूर पढ़ाना चाहते हैं ना तो तस्ती जैसे निकुड़ी निकुड़ी रुपये कहीं जैसे तांगी बुते जे बचत कारी बचता जरूर तने आपू कोई के नौ पुट जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम अंदर जैसे खाते खोल चाहिए ता तने भी जैसे जिंदगी खारी बनी जाती ता कुड़ी न कुड़ी जैसे आख मीटिंग करी थोड़ी जो बाब जैसे चंद होती कि खर्चा सवाल लगना है तो तिखें जैसे थोड़ी बोल सकते कि आख मदद भी जैसे भूं गई देखो तो बुझ बुझ लाते रहते जानकारी देते रहते आख होर में बदिया जनू गीत तैयार थे रुस्तू सुनते गीत ता सुने जी।

जी अत्रु बैदेज नु गीत से सह सुने वाले सुनो काछा चढ़िया पुहाड़ा जो नरोत्तम कुमारे गाले अंतर मौके बजे से देशे प्रदेशे खबरी बस्ती पहले ने सुनाता हूँ अखस्ती शिक्षक महासंघ किनारा है ना मास्टर की तरफ हस्ती हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जैसे केंद्र सरकार क्या साल 2010 क्या पेलकन लगो रे से भ्या मास्टरों की टेठ जे पेपर होता तै संतर छूटते आने जैसे मांग के रिस्ती आज शिमला अंतर पत्रकार वार्ता अंतर महासंघ अध्यक्ष

सुबोध कुमार सुदे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट 29 मई 2006 बे फैसले क्या पत्या लाखों जत्री मास्टर लगो रस्ते तने भविष्य पुर्चे से संकट खड़ा भूंगे रास्ता। एने बोलू कि सेवानिवृत्ति टाइम पुट अब टेट पास करना जैसे ऐसे जे बाध्यता अस्ती ऐस क्या पत्या नौकरी घेने बली जैसे मास्टर परेशान अस्ते है ना तने जे नौकरी अब संकट है गए रास्ता। विनोद कुमार सूदे अभी बोलू कि प्रदेश अंतर 10,000 क्या ज़्यादा मास्टर ने अस्ते जने जैसे टेट है ना टेटे बजाय जैसे नौकरी खतरे अंतर ये रिस्ती जने पास नहीं किए रहना। तथा साल 2010 क्या पहले लगोरे नियुक्ति टेस्ट टाइम ही हिसाब नियम तथा योग्यता मानदंड कहीं जैसे भोरी अस्ती तस्क्या बाद जिते पात्रता शर्त अस्ती तसे पूर्व अंतर जैसे प्रभाव क्या लागू कर दी जैसे न्याय संगत नहीं बते। एने केंद्र सरकार क्या इस संबंध संसद अंतर रखो उपयुक्त विधेयक या फिर विशेष प्रावधान हार कर जैसे मास्टरियां दी तुरंत राहत लेने जैसे अख अर्ज के रस्ता ता अथी अख खबर अख खोरी खबर अस्ती मुँह कहीं चमे झीले अंतर हीरा थक जैसे वाहन जैसे गाड़ी बतिया से जैसे गेरी है ना घर झाड़िए खाए अंतर झाड़ी जैसे अंतर जैसे साथ मैण कहीं जैसे मैथ हुई गई मैथ भोरे मैण अंतर चौर जैसे माल दस्ते तो चार जैसे जलैन अस्ती। चमे झीले पुलिस अधीक्षक विजय सकलैन ने बताओ कि पुलिस तठा स्थानीय मैण कहीं मदद जे जत्री भी लाशें थी से जैसे तठा है ना खाया क्या घर क्या बैर घर छवरिस्ती तो पोस्टमार्टम कर दी चमे झीले जे सरकारी मेडिकल कॉलेज से तल डाई छवरिस्ती। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू एस जे घट सड़क दुर्घटना अंतर मोरे सत मैण कहीं मौतपुट जैसे गहरा जैसे शोक व्यक्त किया तो सात अने जे भी शोक संतर टब्बर रस्ता तने प्रत जैसे भी अने आपू संवेदनाएं जैसे व्यक्त की तो सात जिला प्रशासन के अने जितने भी प्रभावित या टब्बर रस्ते तने हर संभव जैसे मदद देने जैसे अने निर्देश दतोरे रस्ते ऐत थी कुछ खास खास खबरें मौके जे मुँह होरी जे डकबोक लाने अस्ती सस्ती जे काला जैसे जीरा तठा जे राजमा बुते हैं जनजाति इलाके अंतर तने जैसे पैदावारी बारे राजमा के गल करें तो हैं पैंगे घाटिया भी जैसे मत गए मैं जैसे राजमा लाते हैं ना तैयारी तैयारी कहीं गए जैसे राजमा लौरे बुते मैं आपू जरूरत तो लौरे बुते सात के अंतर जैसे बेचने भी लौरे बुते पैंगे जे फसली कहीं गल करें है ना राजमा भूंगे है ना कई भी जे फसल लगती तड़ी अख्त जैसे शुद्ध साफ है ना कोई भी जैसे दवाई कहीं छिड़काव वगैरह ने बताए प्योर जैसे बोल सकते कि ऑर्गेनिक खेती जैसे तड़ी मेहनत करते खाद दिखी बूतू कि मैण जैसे पैंगे है ना लच गोरू थेरे बूते हर एक मैण पेले बथेरी थस्ती मैण कुड़ी न कुड़ी थोड़ा घट तो के रस्ते पर इन्होंने किसी भी बंद कर सौरे किसकी बना जैसे खाद ही है ना फसल वगैरह तो बाग बूनिया इनू तो पैंगे मैण हर एक ग्रांतर मैण जैसे अख दू गए है ना थोड़े जत्रे जैसे पहाड़ी बटते दो चौर बैडलू भी थे रस्ते बाण कंध जैसे अभी जने सुहा सुहा जिमे तो तने चूर भी थे रस्ते तो जे तने मल बूता से जे पत्या है ना 5-6 महीने बाद जे खाद बलती तस जैसे बैगियाँ सटे तस क्या पत्या जैसे जे फसल बूती से साफ बूती है ना प्योर जैसे जैसा ऑर्गेनिक बूते ता जे राजमा भूती पैंगे है ना से जैसे जे लाते तने अखता है ना अमलन भी भूई गेती है ना ता खीण कन भी मैं बोलूँ कि सब साफ बूती शुद्ध बूती है ना आपू हथुएं जैसे तैयार केरी बूती कूलर आई करी कोई नुता इन की दवाई छिड़काव क्या ना साफ खाद छड़ोरी बुद्धि खाद इस गए माल छोर बुता शेर अंतर है ना तो बस्ते तैड़ी बह थी तसे जैसे जिमी जैसे खारी बुती था तसे जे फसल है से भी खारी बुती तो तसे जे कीमत भी तो खारी बोनी अस्ती अभी शुद्ध है साफ है तै साथ या खोरी गल है कि यानी जे है ना अभी प्योर चीज़ जे बुती ऑर्गेनिक जैसे बते तनी बली जैसे दुख बीमारी भी घटी जैसे घट लगती तो कुड़ी न कुड़ी मैं हमें बोलूँ कि अजय साफ जे चीज़ बुती शुद्ध जे बुती है ना से जैसे खारी लैन चाहिए आपू जे मैं बोलूँ कि पेल कर जहन सियाने बुते बाग बीड़िया जैसे बाई करी जैसे जीते खारी जिंदगी जीते दुख बीमारी नहीं लगते तो तहने से ही बुती किसे शुद्ध साफ आपू हाथ से जैसे मेहनत की रही चीज़ जैसे खीते ता जीरे गल करें पैंगे की गल करें तो जे काला जी रस्ता जे हैं पैंगे अंतर है ना दूर जंगल बूता फाटे अंतर बूता कोई तसे खेती नहीं करते है ना फाटे अंतर बूता टाइम ही हिसाब जे सही था मैन चुनते तस्किया पत्या जे से अखता ये क्या कुदरती बूता है ना खरा मेघ भुआता तेस साल जे से थोड़ी खारी बूती न भुआता न बूते कि इसकी अगर सुहाजना गिर है ना जिखें फूलने टाइम बूता तस टाइम मेघ वगैरह नहीं लगा था

जी अतरुबा देजनु गीत से सह सुन वाल सुन गुथें प्यारी भोटड़ी ऐसे गाने गल अंतर ऐसे गीत से साथ साथ पंगवाड़ी कार्यक्रम में टेम भी भूंगे रस्ता। मो महेंद्र कुमार दे इजाजत नमस्कार।

0: लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ साथ FM शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.

0: in पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
2: नवनिर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहां एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
1: इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सदस्यों चंद्र कुमार और यादविंदर गोमा व सांसद अनुराग शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में DBT के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा। लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू, जहां हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं, पूरे इंडिया में 200 जगह ये कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करें।
1: भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
4: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो MC में आए थे। एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
1: राजधानी शिमला में ढली संजौली बाईपास मार्ग भारी भूस्खलन के कारण पूरी तरह बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। शिमला पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से फिलहाल इस मार्ग का इस्तेमाल न करने और वैकल्पिक रास्तों से जाने की अपील की है। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पालकी जागरण पैदल यात्रा आज गहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गेहल पंचायत के प्रधान OP ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
0: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है छाईपाल की जागरण। और जो बड़ोल है जहां पर देवी माता का मंदिर है विजयी माता का, ये हमारी कुल देवी है। और जो धार्मिक आयोजन में है आज हजारों की संख्या में हेल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और

0: माता की जो पालकी है उसको गहल गांव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कांगड़ी कार्यक्रम।

मेरा मन बोलता मैं आवां तेरे कोल। दिखा माँ बिन नहीं मिलता कुथु सच्चा प्यार, माऊ बगैर जिंद नहीं मना साकार। ताई तक गलांदे हन कि मावां ठंडियां चावां, किन्हां हर धुप्पा ते बचांदियां, हर मुसीबत ते मावां बचांदियां हन। माँ बिना न्याणे दा मन नहीं लगता, कने न्याणे दा माँ बगैर दिल नहीं लगता। ये भेंट सुनी तुसा अंकु संजल की आवाज़। गल करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक खास स्वास्थ्य योजना है। इसका मकसद आर्थिक तौर पर कमजोर कने पात्र टबरां जो गंभीर बीमारियों के इलाज वास्ते कैशलैस स्वास्थ्य सहूलत मुहैया कराना है। आयुष्मान भारत योजना की खास गल्लां दईयां हन कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रति पात्र टबरां जो हर साल मिलता है। सरकारी कने सूचीबद्ध निजी अस्पतालों च कैशलैस इलाज मिलता। अस्पताल च भर्ती होने ते पहले कने बादी च कुछ डाक्टरी खर्च भी शामिल होंदे हन। पहले ते मौजूद बीमारियां भी योजना दे तहत कवर होंदियां हन। परिवार ते सदस्या दी गिनत, उम्र या फिरी लिंग पर कोई सीमा नहीं है। इस कुण पात्र हो सकते हैं। खास तौर पर SECC 2011 के आधार पर चुनोयो गरीब कने वंचित परिवार। इसके अलावा 70 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सारे वरिष्ठ नागरिकों जो भी योजना के तहत शामिल किया गया है, चाहे उन्होंने आय कुछ भी हो। योजना का फायदा है दिले दे रोग, कैंसर, किडनी सर्जरी जदे बड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। पूरे भारत च सूचीबद्ध अस्पतालों च इलाज की सहूलत मिलती है। इलाज के टाइम ज़्यादातर मामलों च मरीज जो अस्पताल च पैसे जमा नहीं कराने पौंदे हन। आयुष्मान कार्ड कियां बन सकता है सभी दसते हैं। अपनी पात्रता जांचन कि तुसा इस योजना के दायरे च आंदे हन कि नहीं आंदे हन। दूजा है आधार कार्ड, राशन कार्ड जदे जरूरी दस्तावेज रखन। नेड़े दे कॉमन सर्विस सेंटर या अधिकृत आयुष्मान केंद्र पर जाके कार्ड बनाई सकते हन या फिर ऑनलाइन आवेदन करी सकते हन। ता ए थी तुसां जो जानकारी आयुष्मान भारत योजना दी, ता तुसां इस योजना कन्ने जुड़ी के फायदा चुकी सकते हन कने अपना इलाज निशुल्क करवाई सकते हन। कार्यक्रम दे अगली पेशकश पिंको देवी दी आवाज़ ए लोकगीत।

दी आकाशवाणी शिमला केंद्र शु संगलो प्रोग्राम रेजा के नर भत्ते दी मोड़े दी बाड़े दी आई सेहना दी केंदी भत्ते दी गिप्रो मिलो तरफे राम राम जुले जी साधिरे तोगल संगलो प्रोग्रामरी इंत संगलो रूठे रूठे गीत घुरेर केंद्रेजोनी दीरा सादे इमिना खास खास खबर अल जरूर शपुग इफो गलगप्पा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पाठिल जरूर शाजी जुम्बोग दीरा सादे सादे सादिरे तोक्षु वीरांगना झांसी रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस ते सादिरे ता तेहन जी बात तेज हित लहनी दो आउजी एनो शुईज रानी देश प्रेमो अमिट कुजमनत भूसिम मेट्रो गाथा चे जाते शहीद छुजील दे ते सादिरे हेंजी तो की दिखास दिहाड़ारी दो हेंज हीत लौनी वीरांगना भी हेंजी छप्पन गुड़ लहूँ जी

त आउजी एनो मातृभूमि रक्षा ले मिथालजी एनो भत्ते दीर दुई समर्पित लाजी केते दो बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो इतिहासरी जंग जो अक्षरे चेसितो तात कुरली लेखतो दोन की भई साल सरे रो निंजो सरेरी जूनो सरेवा ध्याड़ा श्वा आउथी आईने यहाउरा सादे लड़पा रानी झांसी दुई एनो मातृभूमि रक्षा उथालजी जान रनरिन ल थलका निमा ब्रवा भई गी घ्यांगो झांसी मारंग आईने शदे यहाउरा सादे हिमतरा सादे कुशी दो दी गप्पा तो की वक्तर ल हेंदी हेंदू देश उथालजी धरती उथालजी छा रूठे कम लाजी कांड्री मिथालजी दिगप्पाई हेंदी प्रेरणा रनरा त तात हेंजी तो गलगप्पा शपोनी हेंदू वीरांगना उपाठी छप्पन गुड़ लौनी हेंजी तो की दो बलिदान दिवसरी प्रोग्राम मुंडरी हेंजी रेरोनी नीरू चांदन्यू सक्सी दिगीत।

ना अबोनी तोखी गलगप्पो अखा रानी लक्ष्मीबायू पाठी गलगप्पा शाजी जुम्बोग छन केंज बातेज ने निकी भाई तोग दो हेंदू आऊँ देशो वीरांगना तो ये दो बलिदान दिवस छू ते सादिरे दो जन्मोगा पलहरिन सहित सस्कू नवंबर साल सरे रहो नीजो रेरी बनारसो इच मराठी ब्राह्मण परिवारा दो जन्म शुआ त क्वाश्तर दो मिन मणि करणिका तुई दोविदारा सादे मनु कुरतवेर मनु पी सालो शुआ औंथी दो या भागीरथी बाई सीवा बाम मोरो पंत तांबे बिठूर जिलाओ पेशवाओ दोरती कम ले तुई ध्यारी पेशवाई दू एनो मियो ट्रोटुनरा दोविदारा सादे दोजी छबी लील कुरदुर मनु क्वाश्तर निये शास्त्रा दा सादे शास्त्रोल शिक्षा लेप्च दे ता मोड़े शुबीरा सादे दोबी युद्ध कला छन तलवार खुकरी चलाच शुई रंग तेजी शुई दीरा सादे सादे चूं गुमज चलाच सिखा सयवा ता साल सरे राव निंजो जुड़ारी फोमे सापी सालो उमरारी मणि करने का उब्या झांसी उराजा गंगाधर राव नेवलकर रसादे श्वा त ब्या उथल दो मीन लक्ष्मीबाई शुजुआ दोगुदी इच यो या बा बने पिमल सुख कोसा पर पी लारिये दोगू दोगू आऊँ दू यो शुआ दुसी युआ ता सरे रव निन जो शाशु मारी राजा गंगाधरो सेहत अहिने खराब शुजी बे परमा दो मस्ते पे परमा दोगू इच काड़ू गोद लेप्च दोगू यो गोद लेप्ची थल नीजो इच नवंबर साल सरे रव निन जो शाशु मारी राजा गंगाधर सी युआ दो जी दू यो मीन छन दामोदर राव किरतुर तेरा जाऊ सी ये थल अंग्रेज आज इच मदम चाल चाले चुदुर की भई आऊँ लॉर्ड डलहौजीशुआ आऊँ लॉर्ड डलहौजीशुआ दोई ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार लेमी था जी जान सिंह शुजी दी आऊँ मदम अनहोनी तोई द्यू फायदा लेपचिम कोशिश ला अंग्रेज आजी दामोदर झांसीऊ राजाऊ उत्तराधिकारी ममने चुदुर माना लाजी के दुर की भई तीत मस्त ता झांसीऊ राणी भी बरसोद फोमे शुमनी जहाजा टंग पेंशन लेपचिए झांसीऊ किला खाली लाजिते अच्छाई बिरी दोस कुर्जुर कि भई इसके कानी शुमनी जहाजार टंग पेंशन रामोनी तो आऊँ झांसीऊ किला तो दू के खाली लाजा अच्छाईल ते ध्यारी झांसी राज्य बचा चिंथल जी रानी लक्ष्मीबाई बागी दु फौज छक्कन लेमी फैसला लेपचा छरिकू जी ब्रितानी अधिकारी जी राज्यो खजाना जब्त ले किर्दुर द्यू नतीजारी इच वक्त दुल्ला बाबिल रानी भी झांसीऊ किला छोड़े गीते झांसी रानी महलाई भी लेबा पर दोई हिम्मत लाजी हर हाल अरी झांसी राज्यो रक्षा लेमी सेम्पा कल हजी गिर्रा झांसी लड़ाई त हैं जी दीऊ गप्पल हरिन सहित दी साल सरे रव निजो सान्यू हैं जी गप्पल हदनी दी दुबक्त दी संग्राम उठारी बने गुआ आऊँ सालो गप्पल हदनी दी तो साल सरे रव निंजो सान्यू गप्पा आर्तिक झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी सुरक्षा मजबूत ले चुगी के रा त दोई एनो इच सेना गठन ले लहा दी सेना रि मेज में दुल भर्ती दोई लहा दो दी लड़ाई ट्रेनिंग ले दोई रन रा दोरती की आऊँ आम मीर श्वादुर दो जी ल दो दीदी लड़ाई री एना दो पूरे साथ रन दुर हैं जी झलकारी बायू गप्पल हरिन से तो दो शकल कुर रत दुर की भई लक्ष्मीबाई रसा दे मिले पे परमा दो भी सेना री खास ठारी राशयुआ कहाँ दो रसाल सारे रहो निंजो सान्यू आऊँ सितंबर है अक्टूबर उल्हाशुआ दुरतल पड़ोसी राज्य और छाए दत्याऊ रजा जी झांसी उटोई हमला लाजी केर दुर पर रानी लक्ष्मीबाई आई नहीं मत रसा दे दोई याऊ लाजी बहादुरी रसा दे दुर दोई लड़ाई री हर चिकंड्रा तां दुर सारे राउ निंजो सारे जनवरी लहारी ब्रितानी सेना झांसी आखा बड़े पिठारे शायु आदुर तो मार्च उल्हारी दोज दू नागर घेरे किर दुर जुड़ हफ्ता लड़ाई थल ब्रितानी सेना ई दू नागर एना दू कब्जा लाजी किर दुर ते सादिरे पर रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव रसा दे अंग्रेज नजर नि बचेगी हुंजरी सफल चुजुआ रानी झांसी ने छन हुन जाते कालपी पिजुआ हैं दू आऊँ झांसी रानी उगा पल्हा देन दू कालपी पी बात दोरती पिजीते दू तांत्या टोपे रसा दे दोआ तांत्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई हैं जी पता ले बाकी भाई झुल्लो काठे सेनाई ग्वालियर विद्रोह लहजा आऊँ सैनिक करतो इर दो साथ रानी ग्वालियर इच की लाउटोई दो जी कब्जा लहजी कांड्र दोर दिख जुड़े एना गो साथ रानी ता अली बहादुर द्वितीय ला रानी साथ रन रा रानी लक्ष्मीबाई दो भी रखड़ी चर्चा तो ध्यारी दुल्लदी लड़ाई री

जी गीत के जरिए तनी कूना जीना अंगमो किसम किसम बाणा इमिना खास खास खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुदा नई दिल्ली प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत जुड़ 1,000 करोड़ टंगो प्रोत्साहन राशि दो फाव दो योजनाओं बारे संवाददाता दी जानकारी रणस्तर नई दिल्ली श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाई कंजदो की भई इल्जा साल छाना या गागस्तनी दी योजनाओं तहत शुम निजो शुम लख बेजी मस कर्मचारी औपचारिक कार्यबल अरी औपचारिक कार्यबल तो दिर दिरी शामिल लसाइल जितो त दिरी फूमे निजो सा प्रच्छत मेजमिर तो दोर दो कंज तो कि भाई योजनाओं तहत दी प्रोत्साहन राशि लेपचा छो पी निज प्रच्छत बेजी मस प्रतिष्ठान अर निजो गा बेजी ढा कर्मचारी दु लधु औ लघु उद्यम तो दोर तो दोर तांधुरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुई कुतो कि भाई कांगड़ा भी प्रदेश पर्यटन राजधानी रूपरी विकसित लेमी था जिते या महत्वाकांक्षी परियोजना दुटोई कम शुभिलेगी तो कांगड़ा जिला जुड़ जाओ दोरारी तोक धर्मशालंग संघ करोड़ निजो रे लख टांगो लागते बने चो एकीकृत आयुष अस्पतालो नीम ठारे गि थल इच जनसभारी मीद भाषण रणस्तर दुई दिगप्पा कुतो ता खबर तो हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ केंद्र सरकारों दुर्चिनी जुड़ 1,000 साल तुई लेगी भत्ते मुंछी दी टेट परीक्षा नी छूट रंजमी मांग लतो तो शिमलंग पत्रकार वार्ता री महासंघो अध्यक्ष विनोद कुमार सूदे कुतो की भई सुप्रीम कोर्टो निजो कुमाई जुड़ 1,000 निजो त्रुयु फैसला उथल लखो मुंछी दू अंजा मोदारी खारी खाईशु जील जीतो भविष्य उटोई संकट खाईशु जील जीतो दोई कुतो की रिटायर शुभिम वक्तरी टेट टेस्टो वाद्यताओ थल नौकरी बिम संकट सही मस्त देखो तो कि प्रदेश आसा 1,000 बेजी मस मुंछिद नौकरी खतरा री तो जुड़ 1,000 सानी तुई लेगी मुंछिद नियुक्ति दुबक तो नियम और योग्यता मानदंड मुताबिक शुजिशु थाले ते लसी पात्रता शर्त ना पूर्व प्रभावनी लागू ले न्याय संगत मस्त दई केंद्र सरकारो दोर्चिनी दिबारे री संसदा जूंशी सही विधेयक या दुरा विशेष प्रावधान हंजी मुंछिद युत ने राहत रन रिमलक आग्रह दुईला तो ता स्वालपी दी जिलाओ ग्राम फूकोक्सर अमरी धारा वाटरफॉलो कछरे चाना इच गड्डी सड़कनी फोमे निरा मीटर योंखा दाजीबे परमा जुड़ सेलानी दुसीमी खबर तो ते इच मियो घायल शुभी में खबर तो दी हादसा री घायल अवमी भी लेगी तो अवमी घायल तो दो इलाज छना सिविल अस्पताल मनालिंग सलेगी तो जितो इमिना खास खास खबर अर्केंदु थल जी त इफो गलगप्पा इफो जानकारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पाठी ते सादिरे केंद्र सरकारे क्वच क्वच उद्यम अर चूचिम थल जी कारोबार अर चूचिम थल जी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चूसी तदो दी योजना री मी दिए न दु कारोबार चूचिम थल जी ढा रकमो लोन राशयुआ ऋण राशयुआ दी योजना छाना अप्रैल जुड़ 1,000 संगारी चूसीते दी योजना चला में मकसद गप्पा लहरीन सहित मुंडत स्वरोजगार उथल जी योजी रसा दे लोन रन रिशु आई दुरा क्वज उद्यम दु जरिए मी दु थल जी रोजगार पैदा लेशु अगर अजिया मी जी एना दु कारोबार चूसी में तदुर त सेम शुबे परमाल अगर दोत पलारी दिव थल जी टंग ढबाऊ पाठी तंगी शुत सहित दो जी दी मुद्रा योजना फायदा लेपचितारसी चन दी मुद्रा योजना तहत छाल गारंटी में लोन लेपचितारसी तदीरा सादे लोन उथाल जे छा प्रोसेसिंग चार्ज ल मलेवी।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं कुलदीप।
1: और मैं निशा शर्मा।
0: निशा जी, कैसे हाल चाल है आपके?
1: जी बिल्कुल बढ़िया है, और हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी किसान बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि कार्य अच्छे से कर रहे होंगे।
0: जी तो देखिए निशा जी, अगर हम कृषि कार्यों की बात करें तो वैसे हमारे जो किसान और बागवान भाई बहन हैं वर्ष भर काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन देखिए आजकल उनका कार्य काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम सब्जी फसलों की बात करें तो काफ़ी सारे सब्जी वाली जो फसलें हैं वो तैयार हो चुकी है। तो किसान और बागवान भाई बहनों, आपको समय रहते अपनी सभी जो तैयार फसलें हैं उनको बाज़ार में लेके जाना है, ताकि आपको अच्छा दाम उनका मिल सके, और साथ ही साथ जो आने वाली फसलें हैं उनकी तैयारी भी आपको अच्छी तरह से करनी है।
1: जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों ने खरीफ की फसलों की बिजाई जो है वो करनी है, तो किसान भाइयों ध्यान रखें, बीज जो है वो आप अनुमोदित ही लें, क्योंकि अगर अच्छा

0: और स्वस्थ बीज आप लगाएंगे तो अपनी फसलों से अच्छा लाभ जो है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमेशा बीज जो है वो आप स्वस्थ ही लें।
1: जी, तो देखिए निशा जी, सबसे पहले अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों के साथ बातचीत करना चाहेंगे आज के मुख्य मुख्य आकर्षणों की। तो देखिए, आज काम की बातों के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे जैविक पुष्प उत्पादन में केंचुआ खाद के महत्व के बारे में, और साथ ही साथ देखिए प्यारे प्यारे पहाड़ी लोकगीत भी हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए लेकर आए हैं, और एक जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय रहेगा
0: प्राकृतिक खेती उर्वरक प्रबंधन, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह भवानी से जानकारी हासिल करेंगे राजेंद्र। तो कुलदीप, जैसा कि आपने बताया कि आज जो हमारा विषय है वो है जैविक पुष्प उत्पादन में केंचुआ खाद का क्या महत्व है, तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए किसान भाइयों, अधिक उपज लेने के लिए जो है वो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है वो करना पड़ता है, और इससे हमारे किसान भाइयों को अनेक समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग ना होने से मिट्टी की उत्पादकता और उर्वरता में कमी, असंतुलित पोषण, कीट और बीमारियों का प्रकोप, मिट्टी में अम्लता पर प्रतिकूल प्रभाव और मिट्टी के अनेक भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप उपज की गुणवत्ता में कमी, मिट्टी, पानी और पर्यावरण में प्रदूषण के साथ साथ कृषि लागत में वृद्धि के कारण कृषकों की आत्मनिर्भरता जो है वो कम हो रही है।
1: देखिए, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है निशा जी, उन्होंने जो है जीवांश खादों को रासायनिक उर्वरकों के विकल्प के तौर में काफी ज्यादा उपयोग करने के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो सामान्यतः सस्ते और पर्यावरण के दृष्टि से उपयुक्त माने जाते हैं। जीवांश खादों को पशुओं के मूत्र और गोबर, कूड़ा कचरा, धान की भूसी, राख हो गया, फसलों के उत्पाद जैसे कि पत्ते हैं, डंठल है इत्यादि को सड़ा गलाकर तैयार की जाती है।
0: जी
1: कूड़ा कचरा को सड़ाने व गलाने में प्राथमिक योगदान केंचुआ का होता है। इन केंचुओं को किसान का मित्र के रूप में भी जाना जाता है। इनके सहयोग से तैयार कंपोस्ट खाद को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है।
0: देखिए कुलदीप, किसानों और बागवानों के समक्ष पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी उर्वरता को भी सुदृढ़ करना एक प्रमुख आवश्यकता होती है। मिट्टी उर्वरता मिट्टी में प्रयोग किए जा रहे पोषक तत्वों, कार्बनिक पदार्थों और उगाए जा रहे फसल के ऊपर निर्भर करता है। साथ ही मिट्टी में जैविक क्रियाओं को भी प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इसी संदर्भ में वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: जी देखिए, अगर हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अपनी फसलों में या अन्य जो उत्पाद है जैसे फूल वाली फसलें हैं उसमें डालना चाहते हैं, तो मात्रा और उसके उपयोग की जानकारी भी हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को होनी चाहिए। अगर हम बात करें फूलों में वर्मी कंपोस्ट की उपयोग के बारे में, तो देखिए नर्सरी कटिंग को स्लरी में डुबोकर ही आपको लगाना है, और साथ ही साथ हल्दी व अदरक के लिए 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य फसलें व फलदार पौधों की अगर हम बात करें तो लगभग 3.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उत्तम किस्म की वर्मी कंपोस्ट दुर्गंध रहित होने के साथ साथ वातावरण के अनुकूल मानी जाती है, जो किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाती है। ये खाद पॉलीथीन के 1, 5 और 50 किलोग्राम के बैग में उपलब्ध होती है, और ये देखा गया है कि इसकी कीमत जो है वो काफ़ी कम होती है। इस तरह से एक फायदेमंद व्यवसाय साबित होता है हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए। इन कैंचों से प्राप्त प्रोटीन का मुर्गी, मछली व पशुपालन उद्योग में पोषक खुराक के रूप में भी आप किसान भाइयों कर सकते हो। इसमें लगभग 50% प्रोटीन होती है, और इसके अलावा भी देखिए कैल्शियम हो गया, फास्फोरस है, अन्य खनिज भी इसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, जो अन्य स्रोतों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। इस तरह से किसान व बागवानों के अलावा व्यापारियों के लिए भी ये तकनीक काफ़ी फायदेमंद साबित कई बार होती है।
0: जी बिल्कुल, और अब बात कर लेते हैं कि केंचुओं को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। जैसे कि मिट्टी का पीएच जो है वो 6.5 से 7.5 तक ही होना चाहिए। विद्युत चालकता जो है वो चाहिए 1.75 से 3 डेसी साइमेंस प्रति मीटर, और नमी जो है वो 60 से 80% उपयुक्त रहती है। तापमान रहना चाहिए 20 से 25 डिग्री, और अधिक निराई गुड़ाई वो होनी चाहिए। कीट और जीवाणुनाशक दवाओं का प्रयोग और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो है वो कम हो तो केंचुए जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। ये सब कारक जो हैं वो केंचुओं की संख्या को प्रभावित करते हैं। मिट्टी पीएच सामान्य रूप से कम या ज़्यादा होने पर इनकी क्रिया

0: शीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सामान्य स्तर ही उपयुक्त होता है। विद्युत चालकता जो मिट्टी में घुलनशील लवण की मात्रा को दर्शाता है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो भी इन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्षारीय मृदाओं में इनकी संख्या कम हो जाती है। नमी की उपयुक्त मात्रा होना भी इनकी जनसंख्या के लिए लाभदायक होता है। नमी की कमी या अधिकता दोनों ही परिस्थितियों में ये स्वस्थ नहीं रहते और मर जाते हैं, जिससे कि इनके द्वारा तैयार जो कंपोस्ट खाद होती है वो उत्तम नहीं होती। अधिक तापक्रम, अधिक निराई गुड़ाई दोनों ही इन्हें प्रभावित करते हैं और इनकी संख्या में कमी आ जाती है। कीट और जीवाणुनाशक दवाइयाँ भी किसान भाइयों ने नुकसान पहुँचाती है, इसलिए केंचुओं का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए दवाइयों का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए।
1: देखिए निशा जी, अगर हम बात करें वर्मी कंपोस्ट और देसी खाद की औसत संरचना के बारे में, तो देखिए वर्मी कंपोस्ट का जो पीएच होता है वो लगभग 7.2 के आसपास होता है और साथ ही साथ देसी खाद का पीएच भी 7.2 के आसपास रहता है। बात करें विद्युत चालकता की, तो इसकी जो विद्युत चालकता 1.32 डेसी साइमेंस प्रति मीटर, और जो देसी खाद होती है उसकी विद्युत चालकता की बात करें तो 0.22 डेसी साइमेंस प्रति मीटर के हिसाब से रहती है।
0: जी
1: कुल पोषक तत्वों की जहां तक बात आती है, नाइट्रोजन की मात्रा इसमें होती है, अगर हम केंचुआ खाद की बात करें तो 0.85% के आसपास, और देसी खाद में रहती है 0.42% के आसपास। फास्फोरस की बात करें तो 0.62% केंचुआ खाद में रहती है और 0.42% जो है वो देसी खाद में रहती है।
0: और पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो वर्मी कंपोस्ट में रहती है 387 ppm और देसी खाद में रहती है 310 ppm। फास्फोरस की मात्रा रहती है वर्मी कंपोस्ट में 156 ppm और देसी खाद में 48 ppm। पोटाश की मात्रा रहती है 1355 ppm वर्मी कंपोस्ट में और 1024 ppm देसी खाद में। जिंक की बात की जाए तो जिंक की मात्रा रहती है 120 ppm वर्मी कंपोस्ट में और 20 ppm जो है वो रहती है देसी खाद में। तांबा की बात करें तो तांबा की मात्रा जो रहती है वो 0.9 ppm रहती है वर्मी कंपोस्ट में और 0.5 ppm रहती है देसी खाद में। लोहा जो है उसकी मात्रा वर्मी कंपोस्ट में रहती है 38 ppm और देसी खाद में रहती है 35 ppm।
1: जी, तो देखिए निशा जी, अगर हम इस जानकारी को देखें तो वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम किस्म की खाद मानी जाती है। इसमें प्राप्त पोषक तत्वों की मात्रा देसी खाद की तुलना में लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है, जो ये प्रमाणित करता है कि इसके प्रयोग से मृदा की उपजाऊ शक्ति में आशातीत वृद्धि आप कर सकते हो। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप कोई भी फसल लगाते हो, चाहे फल फसलों की बात करें या फूल वाली फसलों की बात करें, तो आपको अधिक से अधिक जो केंचुआ खाद है उसका ही उपयोग आपको करना है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपकी जो फसल है वो भी अच्छी रहेगी।
0: जी बिल्कुल कुलदीप, तो ये तो बात हुई जैविक पुष्प उत्पादन में केंचुआ खाद का क्या महत्व है उसके बारे में। तो कुलदीप, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपने किसान बागवान भाई बहनों को सुनवाते हैं कृष्ण लाल सहगल की आवाज में ये लोकगीत।

0: तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत कृष्णलाल सहगल की आवाज़ में। तो देखिए निशा जी, अब हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को इंतज़ार होगा एक और जानकारी का। तो आज हम अपने किसान और बागवान भाई बहनों के लिए जानकारी लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन, और हमें इस विषय में अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी, और इनसे जानकारी हासिल करेंगे राजेंद्र।
1: किसान भाइयों, आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी जी आए। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि प्राकृतिक खेती क्या है और इसके बारे में कुछ बताएं।
2: जैसे आप शायद मालूम होगा कि प्राकृतिक खेती जो है एक नया विषय है हिमाचल प्रदेश में जो शुरू हुआ है। इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमें घर के ही उत्पादों से, घर की चीज़ों से ही हमें जो है कृषि करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने टाइम से हमारी रासायनिक कृषि चल रही है, तो इसके काफ़ी दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आ रहे हैं और इसमें लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस करके सरकार का एक उद्देश्य रहा है कि हम जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक नेचुरल तरीके से और घर के संसाधनों से जो है हम प्राकृतिक कृषि करें। प्राकृतिक कृषि में बेसिकली ये है कि हम इसमें गाय आधारित जो है सारे उत्पाद बनाते हैं। गाय का जैसे गोबर है, गाय का गौमूत्र है, और जो हमारे वहाँ के आसपास की जो

0: जंगली जड़ी बूटियां हैं, उसके आधार पे ही जो है हम ये प्राकृतिक कृषि करते हैं। इसमें कोई भी बाहर का रसायन, बाहर का कोई खाद या दवाई, कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं डालते हैं, ताकि किसानों को जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाजार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इसलिए जो है ये प्राकृतिक कृषि जो है ये हमारी शुरू हुई है।
1: प्रश्न हमारा ये उठता है कि प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन क्या है?
0: जी, इसमें जैसे अब आप जानते हैं कि खेती बाड़ी के लिए जो है हमारे को सबसे पहले कि जो हमारी ज़मीन में जो है उर्वरकता होनी चाहिए। उर्वरकता जो है जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो ज़मीन में होने चाहिए, इसमें मुख्य तौर से अगर मैं बताऊं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसके मेन कंपोनेंट्स है। इसके
1: जी
0: बाद फिर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाश है, और साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और इसके अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे जिंक है, मोलिब्डिनम है, सेलेनियम है या मैगनीज है। इस तरह के जो है हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे मिट्टी में होनी चाहिए। तो सबसे इसमें जो मेन चीज़ है उर्वरकता में वो आता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हम सब जानते हैं कि ये हमारे अवशेषों से ही निकलता है, जैसे हमारे फसलों के अवशेष है या दूसरे जो भी हमारे बाहर की जड़ी बूटियां हैं। तो इसके आधार पे क्या है कि हमारा जो है ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस काम के लिए अदरवाइज़ क्या है कि जो जैसे हमारी जैविक कृषि भी है उसमें गोबर का इस्तेमाल होता है जो कि टनों के हिसाब से होता है, परंतु प्राकृतिक खेती में इससे थोड़ा भिन्न है। इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें अपने घर में ही जो है सारी चीज़ें तैयार करते हैं। गाय के जो गोबर है और उसके जो गौमूत्र है उसके अवशेषों के बेस पे हम ये तैयार करते हैं। तो इसमें जो मुख्य तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो है एक जैसे जीवामृत, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवामृत जो है जैसे गाय का गोबर हम लेते हैं, इसमें गाय के गोबर के साथ गौमूत्र लेते हैं, गौमूत्र थोड़ा इसमें हम जो है गुड़ डालते हैं और दाल का आटा डालते हैं जैसे बेसन, और कुछ जंगल की मिट्टी डालते हैं जहाँ पे हमारा कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ ना हुआ हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उर्वरक हम बोल सकते हैं नेचुरल फार्मिंग में। इसको हम जो है ज़मीन पर भी डालते हैं और पौधों में भी सीधे हम इसकी स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारा उर्वरक जो है इसमें काफ़ी मात्रा में पौधों को मिल सके। इसके अलावा दूसरा हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक जो है वो है घन जीवामृत। तो घन जीवामृत जो है हमारा इस गोबर से, ताज़े गोबर से बनता है। ताज़े गोबर के को जो है हम थोड़ा इकट्ठा करके साफ करके जो उसमें खरपतवार या घास वगैरह है इसको निकाल के इसको हम एक साफ़ जगह में बिछा देते हैं, और इसके बाद इसमें जैसे आपका गौमूत्र डाल देते हैं और गुड़े और बेसन इसको मिक्स करके फिर इसको हम अच्छे से मिला के फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो है इसको हम अपने 4-5 दिन के बाद जो है ये जैसे थोड़ा सा सूख जाता है पलटने के बाद, इसको फिर हम इकट्ठे करके किसी बोरी वगैरह में अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो हमारा घन जीवामृत बनता है इसको जो है हम कम से कम 6 महीने, साल तक भी इवन रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता है। फसल की बुआई से पहले जो है हम इसमें फसलों में जो है घन जीवामृत डलवाते हैं, और इसके बाद जो है फिर जैसे फसल हमारी बढ़ती जाती है तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ऊपर से टॉप एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। और साथ में जैसे फलदार पौधे हैं, फलदार पौधों में भी जैसे रासायनिक खादें पड़ती हैं, उसी तरह से हम जो है इसको खादे को ना डाल के जो है हम इसमें घन जीवामृत डालते हैं। तौलियों में सेबों के लिए है या दूसरे हमारे आड़ू है, बादाम है, कोई भी फल फ्रूट है, तो इसमें जो है हम ये डालते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला घटक आता है वो है हमारा मल्चिंग, जिसको हम आच्छादन भी बोलते हैं। तो आच्छादन में क्या होता है कि हम जो हमारी धरती की जो सतह होती है, जैसे सपोज करो पौधे हैं, हमारे पौधों का जो तौलिया होता है, तौलिए के ऊपर जो है हम एक लेयर बना देते हैं जिसको कि जो घास फूस या जो आसपास के हमारे जो वेस्ट बचता है या जैसे गाय के नीचे की घास होती है उसको जो हम पौधों के तौलिए में बिछा देते हैं, या फिर फसलों के जो सब्जियां हैं सब्जियों के नीचे जो है पौधों में लगा देते हैं, ताकि जो है इसमें डायरेक्ट धूप हमारी ना जाए। तो इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक्चुअली जैसे हमारे केंचुए हैं, देसी केंचुए होते हैं, तो ये छाया में जो है रहना पसंद करते हैं, सूरज की रोशनी से ये दूर भागते हैं। जब हमारे पास अच्छा आच्छादन होता है तो इससे जो है हमारे पौधों की नमी बनी रहती है, ज़मीन की नमी बनी रहती है, साथ में जो केंचुओं के लिए जो है बहुत अच्छा वातावरण होता है। तो इसमें जो केंचुए हैं हमारे बहुत अच्छा रोल करते हैं। ये जो केंचुए होते हैं ज़मीन में नीचे 10-15 मीटर तक जो है ऊपर नीचे चलते रहते हैं, एक टनल बनाते हैं एक प्राकृतिक, जिससे क्या है कि हमारी हवा और जो पानी का जो मिश्रण जो है वो प्रॉपर बनता है, जो पौधों को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। इसके बाद जो है दूसरा जो हमारा घटक है वो है वापसा। वापसा एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे हम इंसान हैं, इंसानों की तरह पेड़ पौधे भी हमारे सांस लेते हैं, तो जो वापसा जो है एक ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें नमी और हवा का जो है एक बहुत अच्छा मिश्रण बनता है, जिसमें हमें हम बोलते हैं कि 50-50% में हमें जो है अच्छी ग्रोथ के लिए पौधों के लिए नमी भी चाहिए और इसमें जो है आपका हवा का संचार भी होना चाहिए। तो इससे जो है जो वापसा है हम

0: इस तरह का वहाँ कंडीशन तैयार करते हैं कि जो है उसमें आपकी अच्छी एरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारा पौधों की जो है या फसल की जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ में जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि हम इसमें उर्वरक प्रबंधन के लिए जो है हम इसमें मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, मतलब बहुत सारी फसलें, बहु फसलें हम इसमें लगाते हैं। और साथ में जो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग फसलें होती हैं, जैसे दलहनी फसलें हैं या लेगुमिनस क्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं, मटर है हमारा और ये बीन्स है, राजमाश है या माश है या उड़द है, मूंग है, तो ये जो फसलें होती हैं ये हमारे जो वातावरण से जो हमारी नाइट्रोजन होती है इसको इकट्ठा करके पौधों की जड़ों में जो है फिक्स कर देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो इनकी जड़ों में नेड्यूल के तौर पे जो है ये जमा हो जाती है। तो इस कारण जो है ये जो है दूसरे पौधों को जो है मिल जाती हैं। कुछ तो हमारी आच्छादन से आपकी नाइट्रोजन मिल जाएगी और दूसरी जो है कुछ है ये बैक्टीरिया कर देते हैं, कुछ फंगस या जो भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और तीसरा जो है हमारा जो हम ऊपर से ये घन जीवामृत या जीवामृत डालते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नेचुरल फार्मिंग जो है उर्वरक का बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाता है, इससे हमारी फसलों की बहुत बढ़वार होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, प्राकृतिक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी?
0: हाँ जी हाँ, देखिए जैसे आप जानते हैं कि रसायनों के जो है बहुत सारे दुष्प्रभाव है, इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है, हमारा वातावरण खराब हो रहा है, खास करके बच्चों वगैरह के लिए हम देखें या कोई भी पेस्टिसाइड या फंजीसाइड डालता है तो उसके दुष्प्रभाव जो है हमें दिन प्रतिदिन देखने को आ रहे हैं। खास करके हिमाचल प्रदेश में देखा गया है कि हम जो हमारी देश की जो औसत है अभी तक 2.2% जो है हम हिमाचल में करते हैं, जबकि देश में जो है 6% जो है कैंसर की अभी तक जो संभावना है। तो हिमाचल में हम जो है बहुत ज़्यादा इसमें पेस्टिसाइड होने की वजह से कैंसर के लिए भी ज़्यादा जो हमें चांसेस ज़्यादा है, तो इस करके हमें जो है ये कम करना है। दूसरा से कि आप जानते हैं कि सेबू में जो है साइंटिफिकली ही कम से कम 8-10 हम स्प्रे जो है रिकमेंड करते हैं। अब डे बाय डे जो है हमारे जो पेस्टिसाइड का कंज्यूमशन है वो बढ़ता जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 1965-66 से जो जब हरित क्रांति हुई थी देश में, तो उस टाइम जो है खाद का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो उस टाइम जो औसत थी वो 23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि अब जो है बढ़ करके 54 kg हो गई है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। तो इस वजह से हमारी जो भूमि की जो उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ने के बजाय जो है घटती जा रही है, उसकी जो हमारी गुण है मिट्टी के वो भी ख़राब हो रहे हैं, मतलब उस मिट्टी बहुत सख्त हो जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इस करके जो है हमें जो है इसकी ओर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि हम लंबे समय के लिए जिसको हम बोल सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम कर सकें, ताकि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हम जो है अपना जो खर्चा भी कम कर सकें। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से जो है हमें इसकी ओर जाना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि 2,00,000 किसानों को जो है हम यहाँ प्रशिक्षण कर चुके हैं, जिसमें से कोई 1,82,000 के आसपास जो है किसान जो है हमारे ये फसलें तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे मार्केटिंग का आजकल लोगों का रहता है कि भाई ये कहाँ मिलेगा हमें प्रोड्यूस, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो ने जो है एक मोबाइल वैन भी यहाँ शुरू कर दी है, जो हफ्ते में 2 बारी जो है यहाँ पूरे, एक तो शिमला सेक्ट्रेट में जाती है, दूसरी डायरेक्ट्रेट ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा जो है यूनिवर्सिटी में जो है हमारे जो प्राकृतिक उत्पाद है इनको बेचने का प्रावधान है। दूसरा जो हमारे FPO बन रहे हैं, जो हमारे किसान है प्राकृतिक किसान, उनका जो प्रोड्यूस बेचने के लिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मंडी नहीं है, तो इसको FPO या FPC के माध्यम से जो है हम इसको बेचने का एक मार्केट लिंकेज बना रहे हैं। तो अभी तक जो है हमने 3 हमारे आउटलेट खुल चुके हैं, जिसमें कि एक यहाँ शिमला बैरियर बालूगंज पे है, दूसरा जो है नम्होल में जो हमारी दूध की सोसाइटी है उसके हमारे साथ मिलजुल के जो है हम एक वहाँ पे भी हमारा आउटलेट शुरू हो गया है, तीसरा जो है एक सोलन में जो है हमारा आउटलेट शुरू हो गया है, जहाँ पर जो हमारा जो किसानों के जो एक्स्ट्रा जो उनका प्रोड्यूस होता है सर्टिफाइड प्रोड्यूस, वो वहाँ अपने उसमें सेंटर्स में आता है और लोग जो है उसको वहाँ खरीदते हैं। तो अभी तक हमने पाया है कि लोगों का इसके प्रति बहुत रुझान है, जो प्राकृतिक खेती के थ्रू जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसका एक तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया होती है, जो काफ़ी 10-15-20 दिन तक जो है खराब नहीं होता, और तीसरा है कि लोग जो है इसको खास करके जो मंडी में अगर हम बात करें तो आढ़ती भी इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जैसे शेल्फ लाइफ ज्यादा होने की वजह से जो है ये इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उचित ज्यादा रेट देते हैं, बल्कि 100-200 रुपया जो है पर क्विंटल।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और आपने प्राकृतिक खेती में उर्वरक प्रबंधन के विषय पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों से साझा की, इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्राकृतिक खेती उर्वरक प्रबंधन जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण अभी आपने सुना। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इससे ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ आप उठाएंगे। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक और लोकगीत का, तो आइए समूह स्वरों में सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने, समूह स्वरों में प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। साथ ही निशा जी, अपने सभी किसान और बागवान भाई बहनों को जनगणना 2027 के पहले चरण के बारे में एक सूचना सभी को देना चाहेंगे। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण व मकानों की गणना का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में निर्धारित तिथियों के अनुसार 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। इससे ठीक 15 दिन पूर्व यानी 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक स्व गणना का विकल्प भी सभी हिमाचल वासियों को उपलब्ध रहेगा। निवासी sec.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी भर सकते हैं। जनगणना 2027 का

0: कार्य डिजिटल माध्यम से संपादित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मोबाइल डिवाइस अथवा निर्धारित एप्लीकेशन के माध्यम से सूचनाएं संकलित करेंगे।
1: जी, प्रथम चरण में मकानों की स्थिति, परिवार को उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में दी गई सभी जानकारी गोपनीय होती है और इसका उपयोग जो है केवल नीति निर्माण और अनुसंधान कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो कुलदीप, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि देखिए घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं समय समाप्ति की ओर। तो आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दें।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आप हमारा प्रसारण FM शिमला पर भी सुन रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें

0: नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। जनसेवा की भावना से काम करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टैट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सफल कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार द्वारा कल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीबीटी के जरिए 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमित सिंगला ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि कार्यक्रम में श्रम व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान हिमाचल के 6099 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री विकसित रोजगार भारत योजना, ये जो कल एक बड़ा इवेंट हो रहा है नेशनल लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्षता करेंगे विज्ञान भवन में, और उस इवेंट में इसका जो बेनिफिट्स हैं इम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को डिसबर्स होगा। लगभग 2400 करोड़ का बेनिफिट जो है डिसबर्स होने वाला है कल के कार्यक्रम के थ्रू, जहां हमारे रीजनल ऑफिस हैं या इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं। पूरे इंडिया में 200 जगह के कार्यक्रम होंगे जो वो नेशनल इवेंट से जुड़ेंगे। जो शिमला में इवेंट हो रहा है वो स्टेट लेवल का है। यहाँ पे जो रीजनल हमारे पास चीफ गेस्ट रहेंगे हर्षवर्धन जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक स्कीम है और सोशल सिक्योरिटी को भी ये कवरेज को एनहांस करे।
2: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के दाड़ी मेला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को लोकतंत्र की नींव बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सबसे मजबूत सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों से निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
4: निर्वाचित जो प्रधान चुनकर आए हैं, उप प्रधान चुनकर आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अगले 5 साल काम करोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2026 से 2031 का जो आपका 5 साल का टर्म होगा, 2032 में प्रदेश जहाँ एक समृद्धशाली प्रदेश होगा।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने और नशे के विरुद्ध जन आंदोलन को सशक्त बनाने का लोगों को सामूहिक संकल्प भी दिलाया। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला में 15 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों की क्षमता वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने धर्मशाला के चरान में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व मनोरंजन केंद्र का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक न होने के बावजूद सरकार ने यहां विकास कार्यों की गति को प्रभावित नहीं होने दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना को सरकार ने गति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए करीब 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि

0: सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में व्यापक सुधार कर रही है।
1: देश के कांगड़ा जिला को कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई है। कुछ योजनाएं लागू होगी और भविष्य में और योजनाओं को भी लागू किया जाएगा। एयरपोर्ट जो आपका 25 सालों से जिसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा रही थी और तकरीबन 2500 करोड़ रुपया हमने परिवार विस्थापित हुए है उपलब्ध करवाया है, अब एयरपोर्ट का निर्माण होगा। दूसरा था कि हेलीपोर्ट बनाया जाए। तीसरा, ये सब चीजें टूरिज्म पॉइंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक कन्वेंशन सेंटर तपोवन में बनाने जा रहे हैं। और आप देखते होंगे कि टूरिस्ट जो पहले बहुत कम आता था, बहुत ज्यादा आने लगा है।
0: राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिला के टापरी स्थित फल मंडी का विस्तारीकरण किया जाएगा, जिससे छोटे व सीमांत बागवानों को लाभ मिलेगा। वे कल शाम किन्नौर जिला के टापरी में आयोजित 6 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्ष 2027 से इस मेले को धूमधाम से मनाया जा रहा है और किन्नौरी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये एक उपयुक्त मंच साबित हो रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वे आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में आयोजित भारत उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले एक दशक में देश की शैक्षणिक संरचना में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है और IIT की संख्या 16 से बढ़कर 23 और IIM की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय को केवल संख्या बढ़ाने की बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने केंद्र सरकार से 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टैट परीक्षा से छूट देने की मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 29 मई 2026 के फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय टैट टेस्ट की बाध्यता के बाद नौकरी जाने का संकट सही नहीं है। विनोद कुमार सूद ने कहा कि प्रदेश में 10,000 से अधिक अध्यापकों की नौकरी खतरे में है और 2010 से पहले हुई नियुक्तियां उस समय के नियमों और योग्यता मानदंडों के अनुसार हुई है। बाद में तय पात्रता शर्तों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं है।
2: जितने भी योग्यता के मानदंड या कोई भी नोटिफिकेशन निकली है वो आगे के लिए इम्प्लीमेंट हुई। 2010 से आगे के लिए तो ये सभी टीचर्स ने जितने भी नियुक्त हुए पास की है, लेकिन उससे पहले ऐसा प्रोविजन नहीं था। आज तक जितनी भी नीतियां बनी है, जितनी भी रेगुलेशन संशोधन हुए हैं या नोटिफिकेशन हुए वो आगे के लिए। हमारा तर्क यही है कि 2010 से पहले तो पूरी उन्होंने अपनी योग्यताएं पूरी की, 2010 से पहले ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। अब एकदम से दी है वो जो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके माध्यम से गुणवत्ता नहीं जा रही। माननीय केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं DC के माध्यम से।
0: भाजपा के नव निर्वाचित पार्षदों ने आज नगर निगम धर्मशाला के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्षदों का कहना है कि नगर निगम चुनाव की मतगणना 31 मई को पूरी हो चुकी है और काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक नव निर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
3: आज भाजपा के जितने भी नव निर्वाचित पार्षद हैं वो MC में आए थे। एक रोष जो हमने प्रकट किया सुखू सरकार के प्रति कि इतने दिन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, 31 तारीख का हमारे काउंसलर चुन के आए हैं और आधे महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है और अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाई गई है और बिना शपथ के, बिना स्टैंप साइन के वो बोलने के काउंसलर हैं। तो बड़ी शर्म की बात है सुखू सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए और तमाम जनता दुखी है।
0: इस बीच भाजपा जिला शिमला की मासिक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय दीप कमल में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थन व जिला प्रभारी सुरेश चंदेल उपस्थित रहे। इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों व केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे जनसंपर्क अभियानों की समीक्षा की गई। सुरेश चंदेल ने बताया कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

0: हैं और इसी कड़ी में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। बैठक के बाद बालूगंज क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जहां लोगों को केंद्र सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक वितरित किए गए। सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में सदियों पुरानी दैवीय परंपराओं का आज भी बखूबी पालन किया जा रहा है। जिला के हरिपुर क्षेत्र के गहल गांव में 18 वर्षों बाद आज माता बिजाई का छाई पालकी जागरण आयोजित किया जा रहा है। पौराणिक गांव बडोल से ये पालकी जागरण पैदल यात्रा आज गहल गांव के लिए रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। गहल पंचायत के प्रधान ओपी ठाकुर ने कहा कि माता बिजाई में लोगों की गहरी आस्था है और इस आयोजन से धार्मिक परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
1: 18 वर्षों के बहुत लंबे अंतराल के बाद गांव है गहल और जागरण हो रहा है, छाई पाल की जागरण। और जो बड़ोल है, जहां पर देवी माता का मंदिर है, बिजाई माता का, ये हमारी कुल देवी है। और जो धार्मिक आयोजन में है, आज हजारों की संख्या में गहल में श्रद्धालु पहुंचेंगे और माता की जो पालकी है उसको गहल गांव के लोग ने कंधों पर उठाकर पैदल 15 किलोमीटर की यात्रा करके हम गहल के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और जो हमारी ये जो दैवीय संस्कृति है गिरिपार क्षेत्र के अंदर, इसमें माता के ऊपर अटूट विश्वास और प्रेम है। ये जो धार्मिक आयोजन है अपने आप में बहुत बड़ा आज पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है।
0: लाहौल स्पीति जिला के ग्रामफू कोकसर मार्ग पर धारा वाटरफॉल के पास आज एक वाहन के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 पर्यटकों की मृत्यु हो गई, जबकि 1 घायल हुआ है। हमारे जिला संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतकों में हरियाणा के गुरुग्राम की 26 वर्षीय तनु कुमारी और उनका 11 माह का बेटा शामिल है। इस घटना में बिहार के वैशाली की घायल 52 वर्षीय सविता देवी का सिविल अस्पताल मनाली में उपचार चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत रोजगार योजना के 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला की 846 पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को दिलाई शपथ। जन सेवा की भावना से कार्य करने का किया आह्वान। धर्मशाला में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं लोगों को समर्पित। कांगड़ा हवाई विस्तार परियोजना के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी विश्वविद्यालयों से गुणवत्ता, नवाचार और किफायती शिक्षा को प्राथमिकता देने का किया आह्वान। और प्रदेश शिक्षक महासंघ ने 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षकों को टेट परीक्षा से छूट देने की केंद्र से की मांग। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी शिमला से अब प्रस्तुत है केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंट वार्ता, जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंट वार्ता में भाग ले रहे हैं युवा नेता करण नंदा जी और इनसे चर्चा कर रही हैं समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई है।
5: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। श्रोताओं, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। अगर देश की युवा आबादी को सही शिक्षा, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध हों, तो वे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में कौशल विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता और डिजिटल सशक्तिकरण

0: को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं और पहलें शुरू की हैं। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी पहलें युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। आज की इस भेंटवार्ता में हम इन्हीं योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे कि युवाओं के जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा है। हमारी भेंटवार्ता का विषय है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस विषय पर बातचीत के लिए आज आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी। नंदा जी, आप पिछले लगभग 20 वर्षों से समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं और आपने भाजपा के विभिन्न संगठनों में कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। आप युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विषयों को भी स्पष्टता व प्रखरता से विभिन्न मंचों पर उठाते रहते हैं। करण नंदा जी, आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है।
1: आप सभी का धन्यवाद एवं अभिनंदन। जिस प्रकार से आपने आज युवाओं के साथ एक संवाद करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा।
0: जी नंदा जी, केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं और युवाओं के कल्याण के दृष्टिकोण से आप इस कार्यकाल को किस तरह से आंकते हैं?
1: ये 12 साल विकास के है, जन कल्याण के है और ये उसी संकल्प के 12 साल है
0: जी।
1: जब प्रधानमंत्री पहली बारी 2014 में प्रधानमंत्री बने और शपथ ली
0: जी,
1: नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो उन्होंने उस समय देखा जब भारत एक काल कोठरी के दौर से जुड़ रहा था
0: जी।
1: राजनीति में एक काला अध्याय समाप्त होने के बाद एक नई ऊर्जा का संचलन हुआ और एक नए उदा आपने देखा कि किस प्रकार से हुआ
0: जी।
1: किरणें निकली और हरेक व्यक्ति को, हरेक श्रेणी को और हरेक वर्ग को एक आशा हुई कि एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जो कुछ करके दिखाएंगे। भारत कहाँ था और आज कहाँ पहुंच गया है, ये उसी संकल्प का एक बहुत बड़ा परिदृश्य है
0: जी।
1: युवाओं की दृष्टि से आप देखिए, इंडिया यूथ डिविडेंड
0: जी,
1: आज भारत युवाओं का देश है
0: जी।
1: हमें खुशी है कि हमारे ऐसे देश है दुनिया के अंदर, हमारे पड़ोसी देश भी ऐसे हो चुके हैं जो बूढ़े हो रहे हैं
0: जी।
1: आज हमारा देश युवाओं का देश है। आज 65% आबादी देश की 35 वर्ष से कम उम्र आयु की है
0: जी।
1: इससे दिखता है कि किस प्रकार से युवा देश को चलाना चाहता है। इससे पहले युवाओं को कह जाता था अफसर नहीं है, नौकरी नहीं मिल सकती है, पर प्रधानमंत्री आए तो युवाओं को अवसर प्रदान किया
0: जी।
1: आज इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और यह युवाओं के लिए भी है। आज भारत में युवा केवल मात्र लाभार्थी नहीं है, ही इज नॉट ओनली अ बेनिफिशियरी बट वो एक विकसित भारत 2047 का योजनाकार है। ही इज द बिल्डर ऑफ विकसित भारत 2027। तो ये विजन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। आज देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने यौवन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले शिक्षा की बात होती है
0: जी।
1: तो हम शिक्षा देखिए किस प्रकार से प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एक्सपेंशन की गई। अगर आप देखेंगे कि IITs की संख्या 6 थी, आज 23 है देश के अंदर
0: जी।
1: तो आज IIT के माध्यम से इंजीनियर कितने तादाद में निकल रहे हैं। IIM पहले 13 थे, आज 21 है। एम्स 7 थे, आज 20 है। मेडिकल कॉलेज 387 थे, आज 780 से ज्यादा है। और MBBS की सीटों ने तो कमाल ही कर दिया कि 51,000 थी, आज 1.18 लाख है
0: जी,
1: दुगनी हुई है। तो ये शिक्षा जो है, शिक्षा ने एक युवा को शिक्षित भी बनाया और एक नौकरी करने वाला और जनसेवक भी बनाया
0: जी।
1: तो इस प्रकार से अनेकों चीजें चली। देखिए PM श्री स्कूल, आप देखिए ज्यादा अभी प्रचलन में नहीं आए हैं पर 14,500 श्री स्कूल जो है वो भारत के अंदर खोले गए हैं। उसके अंदर स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन और मॉडर्न लर्निंग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कॉलेज और स्कूल में ही जो है एक युवा को सशक्त बनाया गया
0: जी।
1: उसके उपरांत अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया और यूथ, उसमें एक यूथ को सशक्त मतलब एम्पावरमेंट, UPI देखेंगे आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रकल्प बन के निकला है भारत, जहां पे QR कोड स्कैन करने से 1 रुपए से लेके जो है 50,000-1 लाख की राशि जो है वो दी जाती है। वो युवा को एक अपना बिजनेस खोलने के लिए कितना बड़ा एक डिजिटल माध्यम बन के सामने आया है। तो एक एक छोटी छोटी सोच को जो है वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने जो है युवाओं के लिए जो है वो पैदा करने का प्रयास किया है
0: जी।
1: आप देखेंगे कि देश में मिडिल क्लास परिवार ज्यादा है, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, तो वहां पे हमेशा आप देखेंगे किस प्रकार से जब भी वहां के जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को कहते हैं अरे जागो, काम करो, कुछ करो, कुछ कर लो
0: जी।
1: तो वो चिंता का विषय होता है
0: जी।
1: आज जो है स्पोर्ट्स में

0: रेवोल्यूशन है, खेलों में जो रेवोल्यूशन है,
1: जी
0: आज खेल से भी एक युवा जो है वो अपनी जिंदगी बना सकता है, और खेल से जो है एक युवा अपनी एक पूरी गति जो है जीवन की वो स्थापित कर सकता है।
1: जी
0: खेलो इंडिया योजना, बहुत बड़ा फंड उसके अलॉट किया गया, और उसमें जो है किस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पर जो है खेलों को सशक्त बनाया गया, उसको स्ट्रेंथन किया गया, और
1: जी
0: रिकॉर्ड बजट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए निर्धारित किया गया।
1: जी
0: उसमें आप देखेंगे
1: बिल्कुल
0: कि उसके उपरांत कितने सारे जो है वो आयोजन किए गए, उसमें
1: जी
0: ओलंपिक्स में देश की भागीदारी बढ़ी, उसमें भी मेडल जीतने का प्रयास हुआ, पैरालंपिक, चेस,
1: जी
0: बैडमिंटन, शूटिंग, एथलेटिक्स, इसके अंदर देखें किस प्रकार से जो है वैभव बढ़ता गया।
1: जी
0: और अभी भी आप देखेंगे किस प्रकार से जो है अभी प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री और हमारे जितने भी लोग हैं वो बधाइयां देते हैं कि हमारे जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में मेडल जीत के आया है। वो क्यों?
1: जी
0: क्योंकि वो एक विजन है। विकसित भारत, आप डायलॉग की बात कीजिए,
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी ने इस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग की जब बात की थी
1: जी
0: तो उसके पीछे एक सोच है।
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि देश के अंदर परिवारवाद चलता आया है, पहले से जो है एक ही परिवार के जो है वो पांच पांच दस दस विधायक भी बनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनते हैं, पर इन्होंने एक संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने कि मैं देश की राजनीति में 1 लाख युवाओं को लेकर आऊंगा।
1: जी बिल्कुल
0: और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की धरती संकल्प लिया,
1: जी
0: और जब 1 लाख युवाओं को लेने आए तो मंडपम दिल्ली में उन्होंने सबसे पहला जो है उसके अंदर एक काम किया कि युवाओं को बुलाया
1: जी
0: कि युवा आए और मंडपम में बैठें और डायलॉग करें अपने प्रधानमंत्री के साथ। उसे युवा की सोच भी आगे निकल के आती है कि किस प्रकार से है, और परिवारवाद की राजनीति को खत्म करते हुए
1: जी
0: युवाओं को जो है राजनीति में लेके आने वाले ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक नई पीढ़ी को राजनीति में जन्म दिया है।
1: जी
0: क्योंकि अगर एक परिवार ही देश को चलाएगा तो उससे जो है देश विकसित नहीं होगा,
1: जी
0: और अगर एक परिवार जो है उससे बाहर निकलकर जो युवा उसने देखा है कि उसके आसपास का वातावरण, वायुमंडल किस प्रकार का है, देश को आज क्या चाहिए,
1: जी
0: देश को किस प्रकार का युग चाहिए, तो वो एक युवा ही कर सकता है।
1: जी
0: तो आप देखेंगे कि हमारे जो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और MLA कैटेगरी, इवन प्रधान, जिला परिषद और साथ में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे युवा पार्टी की ओर पे आगे बढ़ रही है, जिसकी आयु जो है मेंबरशिप की वो 35 साल से कम वाले भी है और साथ में 55 साल से कम के। हमें गर्व है, नितिन नवीन जी जो है उनकी आयु सिर्फ 45 वर्ष है, पर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लीड कर रहा है वो युवाओं के लिए खुद एग्जाम्पल बन के आए।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ में आप देखें कि योजनाएं अनेक हैं। देखिए, युवा अब इसमें से अपना कॉलेज का दौर कंप्लीट कर गया, उसने अपना स्कूलिंग भी कंप्लीट करी, पर उसके बाद क्या करें?
1: जी
0: पर पहले होता था, युवा बोलते थे हम सरकारी नौकरी ढूंढेंगे, सरकारी नौकरी चले जाएंगे, कहीं कॉर्पोरेट हाउसेस में लग जाएंगे, MNCs में नौकरी कर लेंगे, या किसी निजी व्यापारी के पास नौकरी कर लेंगे।
1: जी जी।
0: पर ये प्रधानमंत्री की सोच है कि किस प्रकार से आज जो एक युवा है वो नौकरी ढूंढने वाला नहीं है,
1: नौकरी देने वाला,
0: वो देने वाला बन गया है।
1: जी।
0: और उसके पीछे सबसे बड़ी सोच क्या है? संकल्पित सोच है कि स्टार्टअप, स्टैंडअप योजना, तो 2016 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार वो स्थापित की गई, उसके अंदर आज 2 लाख से ज्यादा मान्यता प्राप्त करे वाले स्टार्टअप जो है वो देश के अंदर काम कर रहे हैं। आप देखिए, 21 लाख से ज्यादा उसमें प्रत्यक्ष रोजगार, डायरेक्ट इंप्लॉयमेंट मिली है। वो किसम के माध्यम से मिली है? स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से मिली है।
1: बिल्कुल।
0: 2025 की बात कर ले तो अकेले एक वर्ष में 44,000 स्टार्टअप जो है वो उसके अंदर पंजीकृत किए गए, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 55,200 उसके अंदर जो है हमारे स्टार्टअप जो है उससे अधिक जो है वो पंजीकृत हुए।
1: जी,
0: किस प्रकार से एक स्वभाव बढ़ा? अब उनके लिए पैसा, अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? अब उनको जो है युवा है, घर की क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो वो लाए मुद्रा योजना।
1: जी,
0: तो मुद्रा योजना लेके आए। तो एक स्टार्टअप है, एक दुकान तो बना दी, दुकान को चलाना भी है, एक फैक्ट्री तो लगा दी, पर उसको संचालित भी करना है, तो क्या किया? मुद्रा योजना लेके आए। आज देश में मुद्रा योजना में 57 करोड़ केसेस जो है वो थ्रू हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो है युवाओं के लिए 44,000 लाख करोड़ की एक राशि जो है वो मुद्रा योजना के माध्यम से स्टार्टअप, स्टैंडअप को खड़ा करने के लिए दी गई।
1: जी,
0: ये पैसा जो है वो युवाओं के हाथ में गया। अब देखिए, वो जो स्टार्टअप है वो बनने जा रहे हैं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न एक और शब्द लेके आए कि अब पहले छोटा व्यापार था, धीरे धीरे बड़े हुए, तो वो स्टैंडअप, स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बढ़े। अब वो संकल्पित यूनिकॉर्न वो स्थित हो रहे हैं, और उसके लिए जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ का अतिरिक्त लोन भी लेने के आए हैं कि उनको दिया जाए। तो आप देखेंगे MSME सेक्टर में

0: इन्होंने स्टार्टअप को किस प्रकार से एक मार्ग प्रस्तुत करके भेजा है, तो ये सोच है।
1: जी,
0: अगर आप बात करें एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव्स की, तो उसको कहते हैं ELI। तो इस प्रकार तकरीबन जो है 1,00,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव के माध्यम से चले। उसके ऊपर जो है इसका टारगेट इन्होंने जो है इन्होंने सुनिश्चित किया कि हम 3.5 करोड़ नौकरियां इसके माध्यम से जो है देश में संचालित करेंगे। और ये संकल्प लिया गया, अभी तक जो पहला उसमें है फर्स्ट टाइमर इम्प्लॉयमेंट। देखिए एक होता है कि एक ने काम किया छोड़ दिया नौकरी, उसको भी अगर गिन लें तो फर्स्ट टाइम जो नौकरी करने व्यक्ति आएगा वो 1.92 करोड़, ऐसा टारगेट लिया है कि इनको जो है इम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो युवा को सुरक्षित एक सीढ़ी दी है, एक पीढ़ी को सुरक्षा दी है।
1: नंदा जी, आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब माना जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम युवाओं के लिए कितने लाभकारी सिद्ध हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए बात है स्टार्टअप और स्टैंडअप की।
1: जी,
0: मैंने पहले ही कहा कि पहले युवा रोजगार ढूंढता था,
1: जी
0: देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा था, हमारे युवा पढ़ के लिख कर दूसरे देशों में जो है वो नौकरियां ढूंढने जाते थे और वहां बड़े साइंटिस्ट बनते थे और वहां बड़े डॉक्टर और सर्जन बना करते थे। पर आज स्टैंडअप इसके माध्यम से हमारा युवा हमारे देश में ही काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत को जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहा है और उनको जो है यहीं पर नौकरी करके अपनी ही लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये नीतिगत जो है ये सोच में परिवर्तन आया है स्टैंडअप और स्टार्टअप के माध्यम से।
1: जी नंदा जी, जैसा कि आपने पहले भी उल्लेख किया है कि हमारे युवाओं में अनंत ऊर्जा, प्रतिभा और क्षमता है, और युवा आबादी को अगर सही दिशा, प्रशिक्षण और शिक्षा के अवसर मिले तो वे राष्ट्र निर्माण की बड़ी शक्ति बन सकते हैं। आपका क्या मानना है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं को सही दिशा देने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए क्या क्या पहलें की गई हैं?
0: देखिए युग बदलते हैं, आज युग किसका है? आज युग है रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, 3D का, पेंटिंग इनोवेशन का। और अगर अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके अंदर 10,000 से अधिक अटल टिंकलर लैब्स को खोला गया है। आज स्कूल से लेके कॉलेज से लेके अंतिम तक एक एक युवा पहले ही इन सब चीजों से परिचित हो जाएगा। तो जो नया युग आ रहा है तो हमारा युवा नए युग के लिए तैयार है।
1: जी बिल्कुल,
0: जब वो तैयार रहेगा तो वो भारत को सशक्त भी बनाएगा और विकसित भारत में विकसित भारत को करने के लिए संकल्पित भी रहेगा।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा नंदा जी, निश्चित तौर पर हमारा देश युवाओं का देश है और हमारा युवा देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना क्या है और इसमें युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
0: जिस ओर युवा चलता है उस ओर माना चलता है।
1: जी,
0: तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो युवा है वो भारत को विकसित बनाने में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का मतलब ये है वी आर हेडिंग टूवर्ड डेवलप्ड इंडिया, जहां पर हमारे पास 6 से 8 से 14 लेन रोड भी होंगे, हवाई जहाज हवाई अड्डों के लिए बड़ी पट्टिकाएं भी होगी, हमारे पास हवा में बात करने वाली ट्रेनें भी होगी, हमारे पास ऐसे जहाज भी होंगे जो समुद्र के अंदर सबमरीन की ओर चलेंगे और ऊपर भी चलेंगे और उसकी एरोनॉटिकल स्पीड जो है वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की भी होगी। उनको संचालित करने के लिए एक युवा प्रशिक्षित किया जा रहा है।
1: जी,
0: मैं यहीं पे उल्लेख करूंगा कि स्किल इंडिया मिशन जो है वो 2015 में 14 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 15 में ये शुरू हुआ। आज मुझे गर्व है कि 1.6 करोड़ से अधिक युवा स्किल इंडिया रेवोल्यूशन के साथ जुड़ा है और पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित हुआ है। आज 15,000 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स जो है इसके अंदर भारत में स्थापित कर दिए गए हैं और इसके अंदर 7,000 ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसको स्किल हब्स कहा जाता है वो स्थापित किए गए हैं। तो जो मैंने बात करी विकसित भारत की उसके लिए आज ही इनको तैयार किया जा रहा है। और यही नहीं छोड़ा, जो गांव के परिभाषा से जुड़ना चाहते हैं, जो गांव में हिमाचली टोपी सिलते हैं, ऊनी रजाइयां सिलते हैं, साथ में जो है पट्टियों के काम करते हैं, उनके लिए भी योजना बनाई गई विश्वकर्मा योजना और उनको भी आज इंप्लॉयमेंट का एक स्थान दिया है। चाहे वो मटका बनाए, चाहे वो हमारे एक गांव में एक छोटी सी चीज बनाए, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है। आज हमारा जो संस्कृति है वो पूरे विश्व में गूंज रही है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल से आभारी हैं।
1: जैसा

0: कि अभी आपने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आपका क्या मानना है कि भारत में युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों महसूस की गई और ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: आज से पहले हमारे जितने भी जो हमारे क्राफ्टमैन है
0: जी,
1: उनको केवल मात्र दबाने का प्रयास किया गया। आज जो है आप देखेंगे केवल मात्र उनको उनके इतने परिश्रम का क्या मूल्य मिलता था, आज से पहले नहीं मिलता था
0: जी।
1: और जब से ये योजनाएं आई है और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय से लेके राष्ट्र स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है, जिला से लेके जो है खंड तक उसके ऊपर काम किया गया है, आज उस क्राफ्टमैन को, आज उस योजनाकार को अपनी वस्तु के 1000 से अधिक मूल्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो सीधा जो व्यक्ति उस चीज का निर्माण कर रहा है वो आज उसका जो है उसको मूल भी मिल रहा है। ये प्रधानमंत्री की सोच है
0: जी।
1: आज देखिए जब प्रधानमंत्री किसी अन्य राष्ट्र में भी जाते हैं, दूसरे देश में भी जाते हैं, तो हिमाचली टोपी प्रचारने का प्रचलन उन्होंने शुरू किया
0: जी, बिल्कुल।
1: आज जो है हिमाचल जो है यहाँ पे चंबा का रुमाल जो है वो किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को दिया जाता है तो हिमाचल प्रदेश गर्व महसूस करता है
0: जी।
1: और इसी प्रकार की देश की अनेकों वस्तु आज की डेट में जो है तहखानों में नहीं होती है पर वेबसाइट पे होती है और प्रधानमंत्री जो है उसकी ऑक्शन करते हैं और वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री को दूसरे देशों से भी कोई वस्तु मिली है तो वो भी एक व्यक्ति जो है अपने घर के लिए खरीद सकता है, मोल सकता है। तो ये सोच में परिवर्तन आया है। आज प्रधानमंत्री का जो भवन है वो लोक भवन, जन सेवा भवन बन के निकला है और जो पहले के जो हमारे जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वहां प्रधानमंत्री के भवन जो है वो जनता के लिए बंद हो जाते थे
0: जी।
1: तो आज जो है हर चीज जो है सेवा संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है, युवाओं को जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और युवा ही जो है वो देश को चलाने में सबसे अग्रिम भूमिका निभाएगा
0: जी। नंदा जी, पिछले 12 वर्षों में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन कौन सी पहले की गई हैं? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरी क्षेत्रों के बराबर अवसर मिल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या मानना है?
1: देखिए पहले जो था एक शहर का जो बच्चा था और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा था तो उनको एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स आता था कि भाई ये तो शहर का बच्चा है, ये
0: ग्रामीण
1: तो
0: क्षेत्रों में अवसरों की कमी थी।
1: बिल्कुल, अवसरों की भी कमी थी और वो सुविधाओं की भी कमी थी
0: जी।
1: आप देखिए आज मैं बात करूंगा, आज हर छोटे बच्चे बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल है
0: जी।
1: आज हर गांव को फाइबर की एक लाइन है, आज हाई स्पीड इंटरनेट हर गांव में उपलब्ध है
0: जी।
1: 5G पहुंच चुका है, 6G आने वाला है। तो देखिए माय भारत नेशन बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, इसने युवाओं को जो है वो मेरा युवा भारत का संवाद केंद्र बना दिया है
0: जी।
1: आज देखेंगे तो सरकार युवा सीधा जो है वो सरकार से संवाद कर सकता है
0: जी।
1: प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप, वॉलंटियरिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए इसमें जो है एक युवा जो है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां अपनी बात वो सीधा प्रधानमंत्री जी या अफसरों से बात कर सकता है, अपनी सोच को अग्रिम ले जा सकता है कि मैं कैसे जो है वो आगे बढ़ेंगे। अभी यहां मैं देख रहा था कि किस प्रकार से युवा जो है अभी IAS जो IPS 1993-1994 के बर्थ वाले सीधा IAS इंडक्ट हो रहे हैं और वो ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो आपने बात करी अफसरों की
0: जी।
1: आज जो है HAS IAS अगर आप देखेंगे वास्तुकार जो आपके PWD क्षेत्र में IPS क्षेत्र में वो यही युवा जो है उनको पूरी जानकारी माय भारत ऐप के माध्यम से मिलती है और उसका पूरा सदुपयोग करते हुए वो सरकारी नौकरी भी लग रहा है, वो सेवाकार भी बन रहा है
0: जी।
1: और उनको जो है माय भारत ऐप के ऊपर अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर जवाबदेही है
0: जी।
1: ये ऐसी सरकार आई है जो जवाबदेही है, अगर उनके मन में कुछ प्रश्न है, उसकी सड़क खराब है, वो सड़क चाहता है, पानी नहीं है, जल से नल के अंतर्गत आना चाहता है, तो वो केवल मात्र उसके अंदर दो शब्द लिखता है और पूरी की पूरी केंद्र से लेके प्रदेश सरकार एक युवा को जवाबदेही के रूप में निकलती है। ये कितना बड़ा चेंज है
0: जी।
1: आप देखिए इसलिए ग्रामीण और शहर में जो युवा विकसित हो रहा है वो एक समान परिपक्ष हो रहा है
0: जी।
1: और इसी प्रकार से जो है वो देश आगे बढ़ता है जब ग्रामीण सेक्टर जो है वो शहरी सेक्टर की तरह जो है वो एक ही गति से आगे बढ़ने का कार्य करे
0: जी। नंदा जी, आप एक युवा नेता हैं, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वर्तमान में नशे की सबसे बड़ी समस्या देश व प्रदेश में देखने में आ रही है जो एक गंभीर सामाजिक चुनौती बन गया है और अब तक उठाए गए कदम इस चुनौती से निपटने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। आपका क्या मानना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या क्या कदम और उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि युवा इस नशे की बुराई से दूर रह सकें?
1: देखिए मेरा सबसे बड़ा है कि हमें

0: जागरूक होना पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि वो किसी भी चीज में जो है प्ररूप लेकर आ सकता है
1: जी।
0: तो अगर हम जागरूक है इसके लिए हमें युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल है कॉलेजेस है। हमें जो है बड़ी बड़ी रैलियों की आवश्यकता नहीं है पर छोटी छोटी बैठकों की और सम्मेलनों की आवश्यकता है। इसके अंदर देखेंगे आप युवाओं में किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं तो इसमें माँ बाप का भी उतना ही बड़ा रोल है जितना युवाओं का है। अगर युवा जो है प्रशिक्षित होगा कि किस प्रकार के सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं। आप देखिए जब कोई नशा करता है या कोई चिट्टे के प्रभाव में होता है या किसी प्रकार के नशे के अंतर्गत होता है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं, इनकी भूख मारी जाती है, पानी कम पीने का होता है, ज्यादा सोता है, अकेलेपन में

0: जितना युवाओं का है। अगर युवा जो है प्रशिक्षित होगा कि किस प्रकार के सिम्टम्स उसके अंदर आते हैं, आप देखिए जब कोई नशा करता है या कोई चिट्टे के प्रभाव में होता है या किसी प्रकार के नशे के अंतर्गत होता है तो उसमें सिम्टम्स होते हैं कि भूख मारी जाती है, पानी कम पीने का होता है, ज्यादा सोता है, अकेलेपन में बच्चा रहने का प्रयास करता है, ज्यादातर जो है वो अंधेरे में रहने का प्रयास करता है, उसको रोशनी से दिक्कत होती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पाती है, कभी कभी वो ऐसे कपड़े डालेगा गर्मी में भी जो पूरे ऊनी है कि वो किसी प्रकार के निशानों को छुपाने का प्रयास करे। तो अगर हमें अपने बच्चे या पड़ोसी या किसी हमारे मित्र का ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उसकी मदद करने आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए इसके अंदर ये जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का बड़ा रोल है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है कई जगह जो है नकारात्मक प्रभाव से काम कर रहे हैं, पर उनसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सकारात्मक रूप में ही काम करे, पर रिहैब्स उनको डाला जाए, उनका संरक्षण किया जाए, जो सरकारी फंड है उसका भी यूज किया जाए कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका सरकार जो है उसका खर्चा वहन करे, और उसके उपरांत जो है जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो उसका अलग प्रकार से संचालन करे। देखिए किस प्रकार से डिस्ट्रेस्ड एप्स आती है, अभी केंद्र मंत्री माननीय अमित शाह जी ने इसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शुरू किया, उन्होंने एप्स का भी एक प्रोग्राम किया, कॉल सेंटर नंबर्स भी करे, उन्होंने शॉर्टकट नंबर्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे है। तो किसी को अपनी आइडेंटिटी अगर बचाव में रखनी है कि वो चाहता है कि मैं इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाना चाहता हूं पर मैं एक्सपोज नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे जान मान का खतरा है, मैं अपने परिवार को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूं, तो इस प्रकार के जो है वो नशे के खिलाफ जो है वो केंद्र में एप्स बनी है उसको प्रदेश में भी इंप्लीमेंट कीजिए, उसको खंड स्तर तक उसको भी जागरूक लाइए। हो सकता है मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पे एक तस्कर जो है वो बॉर्डर से जो है वो नशे को अंदर लाने का प्रयास करता है, पर मेरे पास कोई संसाधन नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन भी हो सकता है कि उनके साथ मिला हो, पर मैं उसके अंदर जो है वो ऐप के अंदर जाके उनका एक कंप्लेंट लॉन्च कर सकूं और मेरी आइडेंटिटी कंसील्ड रहे तो वो एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर हम एक जागरूकता अभियान स्कूल स्कूल खंड खंड और हर जगह चलाए तो ये चीज आ ही नहीं सकती है क्योंकि आगे व्यक्ति ना करना सीख जाएगा, और इसके लिए एक अलग से क्लासेस के अंदर एक पीरियड का निर्माण होना चाहिए, कॉलेज के अंदर एक क्लास होना चाहिए, और इसके अंदर रैपिड फोर्सेस इसमें जो है बच्चों को और टीचर्स का एक समन्वय ग्रुप होना चाहिए जो इसके अंदर जागरूक भी करे, नजर भी रखे, निगरानी भी रखे और उसके ऊपर जो है एक जागरूकता फैला के रखे।
1: जी, जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी युवाओं को खेलों की ओर अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेलो इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्या ये भी नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को प्रेरित करता है?
0: बिल्कुल, देखिए खेल जो है, खेल कहते हैं कि अगर किसी का मन और मस्तिष्क खाली हो तो वो उसके अंदर जो है कुछ चीज तो चली रही होगी, पर अगर वो बिजी रहता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था खेलो इंडिया के माध्यम से अभी जो है इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उसके रूप के खेलो इंडिया के माध्यम से बनते हैं, तो उसमें जो है व्यक्ति जाए दिन के जो है 2 घंटे जो है वहां पे बैडमिंटन, टीटी, बॉक्सिंग, कराटे, जूडो, इस प्रकार की अनेकों स्पोर्ट्स आती है उसके साथ जुड़े, तो बच्चा जो है युवा जो है बिजी रहेगा और उसके अंदर जो है उसको लगता है कि भाई मेरे 2-3 घंटे मेरे अंदर अच्छी ऊर्जा आई है, तो वो उस ऊर्जा को खोना नहीं चाहेगा। तो निश्चित रूप से जो स्पोर्ट्स है, खेल है, वो एक सबसे सशक्त एक माध्यम है जिससे नशा जो है उसका एक उसके ऊपर प्रहार किया जा सकता है।
1: जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के युवा केंद्रित योजनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है?
0: मैंने स्किल इंडिया की बात करी, अनेकों चीजों की बात करी, पर आप देखेंगे कि रोबोटिक्स के ऊपर आज बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन सामने आया है। चाहे आप AI की बात कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, इवन आप इंजीनियर, IIT और इस एक्टिविटीज की बात कीजिए, तो पूर्ण रूप से एक क्षेत्र खुला है और ऐसा कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहा है। पर आज के जमाने में AI और रोबोटिक्स में हमारा युवा जा रहा है और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशी का अवसर है। हमारे युवा ने देश को क्या विदेश को भी नेतृत्व दिया। आप देखेंगे किस प्रकार से आप चंद्रयान की बात करें या किसी और चीज की बात करें तो आज इसरो में भी जो है युवा का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। तो ये सारी चीजों का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में निकल के आता है और इसमें जो है युवा अग्रिम भूमिका में है, ये खुशी की बात है।
1: जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की युवा केंद्रित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए युवा क्या कर सकते हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश रहेगा?
0: केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक न्यू एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके दिया है और इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से एक युवा को अपनी फील्ड के लिए तैयार करती है। आज जो है 34 वर्ष बाद उस सिस्टम

0: को बदला गया है,
1: जी
0: उसमें आप किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं, कभी आपका मन ना लगे तो उसको छोड़ करके दूसरा कोर्स परस्यू कर सकते हैं।
1: जी
0: और आप देखेंगे कि अगर एजुकेशन सिर्फ किताबों से निकलकर बाहर जो है एक प्रैक्टिकल रूप में जाती है,
1: जी
0: जहां वो उसके अंदर अपनी जो है वो एक अपने करियर को एक तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये नई जो है शिक्षा प्रणाली जो 2020 में शुरू करी गई,
1: जी
0: ये बहुत बड़ा एक माध्यम रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से युवा को पता है मैंने क्या करना है
1: जी
0: और मेरी फील्ड क्या होने वाली है, तो
1: जी
0: उसके लिए वो अपनी योजना को भी पकड़ सकता है, उस स्ट्रीम को भी पकड़ सकता है,
1: जी
0: उसी के विषय में अपने एग्जामिनेशंस को दे सकता है। तो ये
1: जी
0: एक बहुत
1: राष्ट्रीय
0: बड़ा एक
1: शिक्षा नीति 2020,
0: राष्ट्रीय शिक्षा
1: जी
0: नीति 2020,
1: जी
0: ये सबसे बड़ा माध्यम होगा
1: जी
0: देश को आगे ले जाने का।
1: जी नंदा जी, आपने बहुत ही सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम विषय पर अपने विचार रखे और युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस चर्चा से हमारे श्रोता, खासकर युवा, बेहद लाभान्वित होंगे। आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप सभी का धन्यवाद।
1: श्रोताओं, निश्चित तौर पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और पहलों से देश का युवा लाभान्वित हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जहां देश के युवाओं को संबल प्रदान कर उनकी क्षमता निर्माण में अहम भूमिका निभाई, वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत हस्तशिल्पियों और कारीगरों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रावधान किया और साथ ही उनके उत्पादों को वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण मदद की। इसी तरह खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से भी युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में शिक्षा, कौशल, नवाचार और रोजगार के अवसरों का विस्तार केवल युवाओं के भविष्य के लिए ही नहीं बल्कि देश की प्रगति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार एकांश प्रमुख श्री रितेश कपूर ने। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत भेंटवार्ता, जिसका विषय था केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान युवाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। इस भेंटवार्ता में भाग लिया युवा नेता व भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मीडिया प्रभारी करण नंदा जी ने और इनसे चर्चा कर रही थी समाचार वाचक प्रभा शर्मा। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रादेशिक समाचार एकांश के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर द्वारा की गई। यह कार्यक्रम आपने आकाशवाणी के शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर केंद्रों पर भी सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। सुनने वाले सभी श्रोताओं को रीमा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार।
4: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
5: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमे किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे और

0: ही सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: संगीत वो एहसास है जो शब्दों से भी आगे निकल जाता है। जब दिल कुछ कहना चाहे तो गीत बनकर गुनगुनाता है। आइए सुनते हैं लक्की फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में, संगीत रचना अदनान सामी की और शब्द रचना समीर की।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व

0: डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सबसे खूबसूरत रिश्ता वही है जिसमें शब्द कम, विश्वास ज्यादा हो और दिखावा कम, प्रेम ज्यादा हो।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
0: 1015-1700 पेंशन, हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सुरों का ये खूब

सूरत कारवां यूं ही चलता रहे, हर दिल संगीत की धुन में यूं ही ढलता रहे। जो गीत कभी भूले नहीं जाते, वो महफिलों में हमेशा यूं ही सजते रहे।

0: फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या और न्यूज एट 9 के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज

0: share them at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

0: उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take

और आज की इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कालजयी फिल्म जिसमें प्रेम, संवेदना और समाज की सच्चाइयों को बड़े ही मार्मिक अंदाज में पर्दे पर उतारा गया था। फिल्म है सन 1957 की रिलीज प्यासा। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित और अभिनीत प्यासा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसी कविता है जो इंसान के दर्द, उसकी उम्मीदों और समाज की विडंबनाओं को शब्द देती है। फिल्म में गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा रहमान और जॉनी वॉकर जैसे कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म की कहानी विजय नामक एक संघर्षरत कवि की है जिसकी रचनाओं को समाज में वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। विजय कॉलेज के दिनों में मीना नाम की लड़की से प्यार करता है लेकिन वो एक अमीर प्रकाशक घोष बाबू से शादी कर लेती है।

विजय एक युवा कवि है जिसकी कविताओं को कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी कविताएं प्रेम, करुणा और समाज की कुरीतियों पर आधारित हैं।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुन लीजिए। शुक्रवार यानी 19 जून 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम लोकवाणी का विषय है योग और स्वास्थ्य। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें शुक्रवार यानी 19 जून 2026 को प्रातः 8:45 से 9:15 के बीच फ़ोन नंबर 28080034 और 28081052 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त हुई।

FM शिमला के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से, और आज की फिल्म है प्यासा। प्यासा फिल्म की कहानी की हम बात कर रहे थे, जिसमें विजय एक युवा कवि है और जिसकी कविताओं को कोई प्रकाशक छापने को तैयार नहीं होता है, और उसके अपने भाई उसे निकम्मा मानकर घर से निकाल देते हैं। इस दौरान उसकी मुलाकात गुलाबों से होती है, जो उसकी शायरी की मुरीद हो जाती है।

एक हादसे में विजय को मरा हुआ समझ लिया जाता है और उसके मरने के बाद उसका वही अप्रकाशित कविता संग्रह बहुत लोकप्रिय हो जाता है और लोग उसे महान कवि मानने लगते हैं। जब विजय लौट कर आता है और देखता है कि लोग उसके शब्दों को तो पूजते हैं लेकिन

एक हादसे में विजय को मरा हुआ समझ लिया जाता है और उसके मरने के बाद उसका वही अप्रकाशित कविता संग्रह बहुत लोकप्रिय हो जाता है और लोग उसे महान कवि मानने लगते हैं। जब विजय लौट कर आता है और देखता है कि लोग उसके शब्दों को तो पूजते हैं लेकिन उसके इंसान रूप को नकारते हैं, तो वो इस पाखंडी और मतलबी दुनिया से दूर चला जाता है।

0: इस फिल्म में जॉनी वॉकर ने विजय के अच्छे दोस्त और एक मालिश वाले का किरदार बहुत बखूबी निभाया है। इस फिल्म का संगीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म को टाइम पत्रिका ने ऑल टाइम 100 बेस्ट मूवीज़ की सूची में भी शामिल किया था, जो इसे विश्व स्तर पर एक महान क्लासिक बनाता है। साहिर लुधियानवी के लिखे गीत और एसडी बर्मन का अमर संगीत इस फिल्म की आत्मा है और हर गीत दिल की गहराइयों को छू जाता है।
1: तेल मालिश, तेल मालिश,

एक फिल्म से एक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 9:30 हुए हैं और ये वक्त है आपका FM शिमला के साथ जुड़ने का, यानी कि ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन का। इस कार्यक्रम में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सुन सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो जल्दी से जाइए अपने ईमेल पे और टाइप कीजिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम, गीत के बोल और भेज दीजिए ईमेल एड्रेस airfmshimlamusicmail@gmail.com पर। तो जल्दी से भेजिए अपने ईमेल्स और जुड़ जाइए FM शिमला के साथ।

तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और कार्यक्रम में शामिल करते हैं आपके प्यार भरे ईमेल्स। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना का ईमेल है। पंढरपुर सिटी से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी ने ईमेल भेजा है और ये सुनना चाहते हैं मैंने प्यार किया फिल्म का गीत। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और अमनदीप का ईमेल है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बेटा बजाज का ईमेल। राज फिल्म का गीत सुनने के लिए ईमेल भेजा है। भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदनी जंगेल ने

सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल का ईमेल है। सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक शर्मा का ईमेल। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शायना और नाजिया इब्राहिम का ईमेल है। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत का ईमेल है। नवांशहर पंजाब से गगनदीप पठानदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी ने ईमेल भेजा है। गुमराह फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं।

नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन और राजेंद्र का ईमेल है। सीआईडी फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का ईमेल है। तो चलिए, आप सभी को सुना रहे हैं मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गीत सुनने के लिए जो फरमाइश आई है, इस फिल्म का गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं।

ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला के साथ। यादगार फिल्म का गीत सुनने के लिए ईमेल भेजा है छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू और चंपा ने। संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राशि और शीतल राजेश का ईमेल है। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने ईमेल भेजा है। बीकानेर से रानी और बिट्टू का ईमेल है, सुनना चाहते हैं गुलामी फिल्म का गीत। छत्तीसगढ़ पलारी से नीतीश कुमार, देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन का ईमेल है। उत्तर प्रदेश जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया का ईमेल। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का ईमेल है। नथाना गांव से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का ईमेल है। कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन और अपार ढिंगिया ने ईमेल भेजा है और किसी भी गीत के साथ ही अपनी फरमाइश जोड़ना चाहते हैं। सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बडोले, सीताराम, साहिल, सुमन, विशाल, हरिओम, भावना बडोले का ईमेल है। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शायना और मैंडी शर्मा का ईमेल है। पंजाब से सबिया खातून और आलिया ने ईमेल भेजा है। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवांशी और वानी का ईमेल है। निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया और रहीम का ईमेल।

सनावद मध्य प्रदेश से खुशी, खुशदीप और एकांश का ईमेल। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास, सोनम सिंह और अनामिका का ईमेल है। पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक सिक्का का ईमेल। गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और अरीबा का ईमेल है। सिरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का ईमेल।

मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, जग्गी, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा और आशा का ईमेल है। तो चलिए, आप सभी को सुना रहे हैं गुलामी फिल्म का गीत सुनने के लिए जो फरमाइश आई है। इस फिल्म का गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं।

कासगंज यूपी से ईमेल भेजा है गीता नायक, योगेंद्र निहारिका और सुशांत नायक ने। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू का ईमेल है। कपिल भारद्वाज, ज्योत्सना भारद्वाज आदि, ऋतु नेगी ने संजौली शिमला से ईमेल भेजा है, सुनना चाहते हैं मेरे सनम फिल्म का गीत। दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा का ईमेल है, मुद्दत फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। टिकरी से जागेश्वर, दीपक कुमार और जयश्री देवांगन ने ईमेल भेजा है जानी दुश्मन फिल्म का गीत सुनने के लिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित का ईमेल है। महाराष्ट्र रत्नागिरी से संजय और अमन भोजने का ईमेल है। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु का ईमेल, नजराना फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे का ईमेल है।

बिलराम से इरशाद अहमद शाह और मरियम का ईमेल है। हीर रांझा फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर का ईमेल।

रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकर नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकर का ईमेल है। जानवर फिल्म का गीत ये सुनना चाहते हैं। सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री का ईमेल है।

जी आर पॉल ने ईमेल भेजा है जलंधर से, और कोई भी गीत ये सुनना चाहते हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और उजस्वी यादव का ईमेल है। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम, चीनू, दीपक श्याम और अनुश्री श्याम कुंवर का ईमेल है, और फिल्म ऊंचे लोग का गीत ये सुनना चाहते हैं। रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, सक्रांति चौहान, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान का ईमेल है। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार ने ईमेल भेजा है। दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान सलमान और इसरार का ईमेल है। अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर और सदानंद मंदूरकर का ईमेल है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा ने ईमेल भेजा है, कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। मुरादाबाद से ईमेल है अजीत कसाना का। शिव मंदिर नवल कॉटेज देवनगर कसुमटी शिमला से लोभाराम गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, अनुज और मुकुल गुंजेटा का ईमेल है। संबलपुर से ज्योति यादव और उजस्वी यादव का ईमेल।

तो चलिए आप सभी को सुना रहे हैं मेरी सनम फिल्म का गीत सुनने के लिए जो फरमाइश आई है। इस फिल्म का गीत आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं।

ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन में आज बस इतना ही। आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए। एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं गजलें। गजल सिर्फ शब्दों का संगम नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से निकली हुई वो आवाज़ है जो सीधे रूह को छू जाती है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल।

0: ना ये बुझ के धुआं होते
1: कुछ अल्फाज जब एहसासों का लिबास पहन लेते हैं तो वही गज़ल बनकर दिलों में उतर जाते हैं। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा को।

दिल की बातें लफ्ज़ों में बयां हो जाए तो गज़ल बनकर फिजाओं में बिखर जाए। आइए सुनते हैं चंदन दास को।

हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

संगीत की दुनिया में गज़ल एक ऐसी विधा है जो दिल की गहराइयों में उतरकर भावनाओं को शब्दों का रूप देती है। गज़ल कभी मोहब्बत की दास्तां सुनाती है, कभी जुदाई का दर्द बयां करती है, तो कभी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को हमारे सामने रखती है। आइए सुनते हैं गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पुराने गीत उस दौर की याद दिला देते हैं जब संगीत में सादगी और भावनाओं की मिठास हुआ करती थी। तो आइए सुनते हैं मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत रचना और मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

वो दौर भी क्या दौर था जब गीत दिलों में उतर जाते थे, कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती थी, कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती थी तो कुछ चुपके से रुला जाते थे। हमसाया फिल्म का गीत आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, ओपी नैयर की संगीत रचना।

गीतों में वो जादू होता है जो हर दौर को अपना बना लेता है, कभी प्यार सिखाता है तो कभी जीने का अंदाज बता देता है। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपको सुना रहे हैं आराधना फिल्म का गीत, एस टी बर्मन की संगीत रचना और आनंद बख्शी की शब्द रचना।

कि दिल को आज भी पुराने रास्तों की खुशबू याद है, वो मिट्टी, वो आंगन, वो बेफिक्र हंसी और वो लोग जो अब सिर्फ यादों में रहते हैं। शायद इसीलिए इंसान लाख आगे बढ़ जाए, दिल आज भी अक्सर पीछे छूटे हुए दिनों में ही सुकून ढूंढता है। आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को, फिल्म आंसू बन गए फूल में।

लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, मगर जब बात अपनी हो तो उन्हें तराजू नहीं मिलता।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं उमराव जान फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत से सजाया है खय्याम ने।

0: इसी के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए। कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी और अंग्रेजी समाचार के लिए। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल-पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम

की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुँच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।